मैनू तो सिर्फ एक गल चाहिदी है कि तुसी मैनू मारियो ना। उस आख्या कि हो सकता है, ये मेरा कर्म है, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरा अपना आप है, मैं इस तो किवें बागी हो सकता। एक गल हो सकती है भी तेरी मौत मैं लुक भी कर दिना भी जिदा किसी नूं पता ना लगे, जिन्ना चिर राज खुलेगा नहीं उन्ना चिर नहीं तू मरेगा। पर मसला साफ है कि मौत तो ते भी नहीं ना बच सकिया। गुरु ग्रंथ साहब च जिक्र है, समण जो इस प्रेम की दम के हो होती साट, रावण होते सो रंग नह जिन सिर दीने काट। तो खैर मैं जिक्र कर रहा कि मनुख मौत तो डरदा है ते मौत तो बचण लई ओ सारे हीले वसीले करदा है। सतगुरु सचे पातशाह ने मैनू खिमा करना मौत तो बचण दा कोई ढंग नहीं दसिया, मौत तो एस्केप करन दा कोई ढंग नहीं दसिया, क्योंकि जिहड़ी गल हो ही नहीं सकदी उहदे संबंध विच कोई धार्मिक व्यक्ति को गुरु पीर पैगंबर उपदेश करे ते ओ गुरु नहीं हो सकदा। जिहड़ा एक अटल सच है जिन्हों कोई बदल नहीं सकता, उहदे संबंध विच कोई नुस्खा जारी करने की कोशिश करे भी नहीं गल तो हो नहीं सकती पर मैं कर देंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई रब का शरीक ही इदां दीआं गल्लां करेगा। इत्थे कई लोग इस तरह के तुरे फिरते ने, बंदा मर जाता कहिंदा सामके रखो मुड़ के जी पाएगा, मजाक है ना, कानून कुदरत नाल मजाक है। खुद मर जाना है दूजियां नूं जीवन का नुस्खा दे रहा है। बड़े बड़े तनंतर, बड़े बड़े वैद, बड़े बड़े सब तुर गए संसार विचों। सतगुरु सचे पातशाह ने यह गल कही है कि वह जिहड़ा एक परमात्मा है ना, उहदी जिहड़ी हस्ती है वह काल रहत है। इस करके सिख ने किसी भी मूर्ति की, किसी भी स्वरूप की, किसी भी देह की उपासना नहीं करनी, क्योंकि कोई शरीर मैनू खिमा करना, कोई मूर्त, कोई स्थान, कोई भी चीज जिहदा आकार, जिहदा फिजिकल स्ट्रक्चर है, मटीरियल दी बनी हुई है, किसी कीमत ते भी उहदी पूजा करनी सिख धर्म नहीं है, किसी कीमत ते भी, क्योंकि इस सिद्धांत है, यह मूल मंत्र है, यह सिख फिलासफी का केंद्री है, केंद्र है। इहदे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब की बाकी सारी बाणी है, इहदे अधीन बाकी की सिख हिस्टरी है। यह नहीं सतगुरु फलसफा विचार दर्शन ते कोई होर देंदे ने ते करदे कुछ होर ने, यह तो फिर गल नहीं ना बनती। वो गुरु ही कहदा होया जिहड़ा कवे कुछ होर ते करे कुछ होर, उहदे ते किवें तस्लीम किया जा सकता है उहनूं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह यह भी नहीं कहिंदे कि मैं सदा रहण वाली चीज हाँ, ना। इसे करके गुरु साहिबान ने अपनी तस्वीर, अपना बुत सिखां नूं नहीं दिता। आ जो जिहड़ियां तस्वीरां असीं लई फिरदे हां इह मजाक है, इह साडी कल्पना है, आर्टिस्ट दी कल्पना है, इह कोई असलियत नहीं, सच नहीं। साडा ते विश्वास केंद्र अकाल मूर्त है, ते फिर असीं इहनां मूर्तां दा की करांगे। मैनूं इक बड़ी गल याद आई है, मैं कैनेडा विच सां, ओंटारियो च, टोरंटो दे लागे एक छोटा जिहा टाउन है हैमिल्टन, उत्थे सां ते एक बंदा मैनूं सवेरे मिलण आ गया। आंदा गया जी रात बड़ा कौतुक होया। मैं कहा की होया? आखण लगा रखे मैं रात के बोतल शराब दी पी ली, चढ़ी नहीं मेरे ते, कोई असर ही नहीं होया। मैं गल की तू मैनूं की दसण लगा, फिर आए एक्सपेरिमेंट मेरे किस काम आऊगा। कहन लगा नहीं मैं तुहानू बाबे नानक की करामात दसन लगा। मैं क्या भी बाबे नानक की करामात इहदे च की है? तैनू आदत है पीण की, तू बहुती पीवेगा ता ही चढ़नी है, बोतल नाल नहीं चढ़ी हो सकता, शराब च कोई नुक्स हो तैनू पता ही ना हो बेहोशी च मैनू चढ़ी भी है कि नहीं चढ़ी। हुण बेहोशी च की पता चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, गल ही मुक गई। वह कहन लगा नहीं मैं तुहानू गल दसदा। मैं कहा दस। उहने जेब चो एक कार्ड कढ़िया जिहदे ते गुरु नानक साहब की फोटो, दूजे पासे कैलेंडर सीगा। कढ़िया उहने कार्ड, कहिंदा जी गल पता की होई? मैं सोचा भी शराब चढ़ी क्यों नहीं मैनू। कहिंदा बाद विच मैं वेख्या भी वह मेरी जेब च ते गुरु नानक साहब की फोटो है, इस करके शराब नहीं चढ़ी। मैं कहिंदा मतलब फार्मूला बन गया भी जेब च फोटो पा लो शराब नहीं चढ़िया करेगी, तू परमिशन ले ली, परमिट ले लिया। मैं कह तस्वीर

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे

सतगुरु जी की साजी निवाजी परम सत्कार योग साध संगत जी, दीन दयाल पतत पावन भगत वत्सल कृपा निदान, जहरा जहूर हाजरा हजूर जुगो जुग अटल, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की परम पवित्र हजूरी दे विच जुड़ मिल बैठ सतसंगत करन दा भागा भरिया समा प्राप्त हो रहा है। परम पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी के अंदर रोजाना की तरह अमृत वेले प्रकाशमान हो के धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने जो पावन हुक्मनामा बख्शिया गुरमुख प्यारे ग्रंथी संघ जी रसना तो आप जी ने सरवण किया है और नियम के मुताबक तिस शब्द की कथा विचार जिन्नी क सतगुरु जी आपू समत सोझी बख्शिश करन उन्नीक करके आपां आनंद मानना है। अज का यह पावन श्री मुख वाक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 956 अंक ते सुभाईमान है और राम कली राग दी पहली वार दे विच ए शब्द सुशोभित है। तीन वारा राम कली राग विच सतगुरु जी ने सुभाईमान कीतियां ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत रूप गुरबाणी का पाठ करन वाले गुरमुख जन ये जानते हैं कि कुल 22 वारा वख वख रागां विच सुभाईमान हैं। सो ये रामकली राग विच जो पहली वार है ये धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब तीसरे पातशाह जी की उचारण की है। इस तो अगे दूसरी वार पंजवें पातशाह जी ने श्लोकों समेत उचारण की है और तीसरी वार सतगुरु नानक देव साहिब जी तो श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी तक सतगुरु जी के पंजा स्वरूपों की उस्तत करद्या होया गुरु घर के रबाबी गुरसिखा भाई सत्ता और भाई बलवंड जी ने उचारण की। ये भाई सत्ता ते बलवंड जी की उचारण की हुई रामकली राग की वार और बसंत राग विच पंजवें पातशाह जी की उचारण की वार जिस दियां सिर्फ तीन पौड़ियां हजूर ने उचारियां ये वारा पौड़ियां दे रूप विच ही हन क्योंकि संगीत नू जानण वाले खास तौर ते ढाडी विद्या जां कविशरी विद्या नू उन्हां नू पता है कि वार दी जिहड़ी चाल है ये पौड़ियां विच हुंदी है और पौड़ी दे मात्रा दे रूप विच अनेकां ही सरूप होया करदे ने। सो ये दो वारा रामकली राग विच सत्ता बलवंड जी की ते बसंत राग विच पंचम पातशाह जी की ये पौड़ियां दे रूप विच ही हन। बाकी सब जिहड़ियां 20 वारा हन वह सतगुरु जी ने ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੇ ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਲੋਕਾਂ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ और बाकी पहले तीसरे चौथे पातशाह दियां उचारण कीतियां वारां दे नाल सतगुरां दे वख वख सरूपां दे जेड़े सलोक उचारण कीते हुए ने वो संपादित कीते धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने। रामकली राग दी ये पहली वार श्री गुरु अमरदास महाराज जी की उचारण कीती हुई है जिस दा भाव है कि इस वार दियां सारियां पौड़ियां तीसरे पातशाह जी ने उचारियां। सलोक भी ज्यादातर तीसरे पातशाह जी दे आए, पहले पातशाह दे सलोक भी इस वार दे विच आउंदे ने। और अज दा ये पावन हुक्मनामा रामकली राग दी वार दी सलोकां दे समेत 20वीं पौड़ी है
जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द अंदर आपां सारियां नूं उपदेश बख्शिश कर रहे ने, मन चित बिरतियां नूं एकागर कर लिव सुरत गुर चरणा विच जोड़ के श्रद्धा भावना प्रेम सत्कार सहित सरवण करके ला

0: सतगुरु नानक देव साहिब महाराज जी के तीसरे स्वरूप बेअंत वडियाइया के मालक धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो हे बन आवै। सतगुरु अमरदास साहब जी सलोक उचारण करके उपदेश फरमा रहे ने। सलोक अखर दे अनेक अर्थ जेड़े ने यह कोशां दे विच मिलदे ने। मुख रूप विच छंदाबंदी की एक चाल जेड़ी है इहदा नाम सलोक है। ते आम तौर ते सलोक जेड़ा ये दोहरे की चाल विच हुंदा है। संगीत विद्या नू काव्य रचना नू जानण वालियां नू पता है कि दोहरा जेड़ा हुंदा है 24 मात्रा की उसकी एक पंक्ति हुंदी है 13 ते अध ते अध तों बाद 11 मात्रा। सो इस प्रकार दो पंक्तियां दोहरे दियां होया करदियां ने। आम तौर ते दोहरे की चाल विच ही सलोक उचारण किया जाता है। फर्क इन्ना कि दोहरे दियां सिर्फ दो ही पंक्तियां हो सकदियां उस तों वध नहीं। सलोक दियां पंक्तियां दी कोई गिणती निर्धारित नहीं। दो भी हो सकदियां दो तों वधीक जिन्नियां मर्जी भी हो सकदियां। सो इह छंदाबंदी दी एक चाल दा नाम सलोक है। सलोक दा अर्थ उपदेश भी है। सलोक दा अर्थ जस उस्तत वडियाई भी है। वैकुंठ धाम दियां जो चार मुक्तियां ग्रंथां ने मंदियां उहदे विच्चों एक मुक्ति दा नाम भी सलोक मुक्ति है। जिस इष्ट देव दी कोई पूजा उपासना करदा होवे उस दे लोक दा निवास मिल जाणा इहनू सलोक मुक्ति कहा जांदा है। ते संधि विच्छेद रीति राही सलोक स्वै लोक निज लोक भाव सच खंड। सो इस प्रकार इस सलोक दे अनेकां वक्रे वक्रे अर्थ हन। समुचे रूप विच आपां इउं कह लईए कि सतगुरु जी का बख्शिश कीता ऐसा उपदेश जिस विच वाहिगुरु के नाम दी उस्तत वडियाई है, जिस दी कमाई कीतियां सलोक मुक्ति तां विचारी की चीज है। सलोक स्वै लोक निज लोक दी प्राप्ति वाहिगुरु के स्वरूप दी प्राप्ति हो जांदी है। ऐसा पावन उपदेश छंदाबंदी दी चाल सलोक दे राही धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी उचारण करदे हन।
1: आसा अंदर सब को
0: फरमान करदे ने कि इस संसार विच जिन्ने भी जीव हन आसा अंदर सब को, सारे आसा दे विच ने। हरेक मनुख दे मन विच कोई ना कोई आस लगी हुई हुंदी है। ते जदों किधरे परमात्मा दी मेहर दे नाल ओ आस पूरी हो जावे तां फिर होर आस पैदा हो जांदी है। एक तों वध आसां जिहड़ियां असीं आपणे मन विच हमेशा लई फिरदे आ। जीवन विच कई पूरियां हो जांदियां कई नहीं हुंदियां, और उन्हां आसां दी पूर्ती वास्ते आपां दौड़ भज करदे रहिंदे हां, अनेक प्रकार दे प्रयत्न करदे रहिंदे आ कि ऐ आस मेरी पूरी हो जावे, मेरी ऐ मुराद पुग जावे। इउं दुनिया दे सारे लोग जिन्ने ने भाई ओ आसा दे अंदर हन, आसा दे विच ही लगे हुए ने।
1: निराशा हो
0: कोई कोई कोई विरला गुरमुख प्यारा है जो निराशा होए। निराशा निराशा तो भाव निराशा, जिहड़ा आसा तो रहत होवे, जिहदे मन विच किसी प्रकार की आस ना होवे। ग्रंथ कहिंदे ने सोत बेत लोक ईखणा तीनी, तीन प्रकार दियां ईखणा इच्छावां, पुत्तर दी प्राप्ति, धन दी प्राप्ति और संसार दे विच अपनी माण वडियाई दी प्राप्ति। ये प्रमुख रूप दे विच इच्छावां जिहड़ियां ने ये मनुख दे मन विच हुंदियां है। इन्हां तों इलावा आसावां दी गिणती ही कोई नहीं। आ भी मिल जावे, ओ भी मिल जावे, संसार दे पदार्थ, ब्रह्म लोक दे पदार्थ, मुक्तियां इत्यादिक। सो इस प्रकार अनेकां आसां विच मनुख हरेक दा मन ग्रसिया होया है। कोई कोई गुर शब्द दे आसरे इन्हां आसां तों रहत हुंदा है। सब तों प्रमुख रूप विच तां साडी आस इही है ना कि खाण पीण लई भोजन पदार्थ मिले, पहनण लई चंगे वस्त्र मिलण, मुढ़लियां लोड़ां साडे जीवन दियां। पर जिहड़े गुरमुख प्यारे निर आस अपना जीवन बतीत करदे ने उहनां दी अवस्था महाराज कहिंदे ने कि शाबन भोजन की आस ना करई, अचिंत मिलै सो पाई। शाबन शरीर नूं कज्जण वाले वस्त्र ते खाण लई भोजन, ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਪਸ਼ਰਾਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 72 ਹੂਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਗ ਵਾਸ ਨਾ ਬਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਭਲਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਸਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनी सब सृष्टि सब पर लो जाई। अब परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं कि आप जी विष्णु जी को, शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को अविनाशी कह रहे हो, ये अविनाशी नहीं है। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनी सृष्टि सब पर ले जाई। चलसी कच्छ मच कूरम्बा, चलसी धोल धरणी अठखम्बा। चलसी माने नाश होगा, सब चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चलसी स्वर्ग पाताल समूलम, चलसी चंद्र सुर दो फूलम। जो आरंभ चले धर्मदासा, पेंड प्राण चलसी गठ सुवासा। चले भिष्ट बैकुंठ विशालम, चलसी धर्म राय जमसालम। पानी पवन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुन धर्मदासा। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राजा, ब्रह्मा विष्णु ईश चले सब साजा। चले माने नाश होगा। चले भिष्ट बैकुंठ विशालम, चलसी धर्म राय जमसालम। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राजा, ब्रह्मा विष्णु ईश चले सब साजा। चले यानी नाश होवे। चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम ना चले जो पद परवानी। आदि माया दुर्गा का भी नाश होगा या भी मरेगी, हम नहीं चले क्योंकि हम उस सच्चे नाम के उपासक हैं। अब परमात्मा चाहते हैं कि इसको कोई ना कोई अट्रैक्शन बने सच्चाई का, कि हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हम उस सच्चे नाम के उपासक हैं। हम नहीं चले। चले आद माया ब्रह्मज्ञानी, हम न चले जो पद परवानी। हम उस परम पद को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए हम हमारी मृत्यु नहीं होगी। अक्षर रूप रहे ना कोई, जिन एती लीला समोई। कहते हैं अक्षर रूप, अक्षर ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कहते हैं ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का भी नाश होगा। परम अक्षर ब्रह्म है रूप हमारा, हम ना चले चले संसारा। हम परम अक्षर ब्रह्म है, हम नहीं मरेंगे, मरे सब संसारा जो नाम आधार नहीं है। अगम अनाहद अधर्म है, नर आकार निज नरेश। गरीब दास जिंदा कहे सुनो धर्म उपदेश। धर्म दास बोलत है बानी, कौन रूप पद कहा निशानी। तुम जो अकत कहानी भाखी, तुमरे आगे तुम ही साक्षी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान आपने जो यह कथा बताई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, बैकुंठ भी नाश होगा, दुर्गा भी की भी मृत्यु होगी, अक्षर पुरुष की भी मृत्यु होगी, कहते हैं ये बात तो आप ही बता रहे हो और इसके एकमात्र आप ही साक्षी हो, और किसी ने आज तक हमें ये ज्ञान बताया नहीं। ये अचरज की लीला स्वामी, मैं नहीं जानत हूं निज धामी। कौन रूप पद का परवानम, दया करो मुझ दीजे दानम। अब धर्मदास जी कह रहे हम तो तीर्थ व्रत कराही, अगम धाम की कुछ सुध नाही। हम तो इन तीर्थ व्रतों में लगे हुए हैं, हमने उस सतलोक की अगम धाम आगे वाले धाम की ब्रह्म से आगे जो ज्ञान है उसके विषय में हमें कुछ सुध नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। गर्भ योनि में रहे भुलाई, पद प्रतीत नहीं मोय आई। हम तुम दो एक, एक में एका, सुन जिंदा मोह कहो विवेका। तुम जो बटक बीज कह दीना, तुमरा ज्ञान हमो ना चीन्या। हमको चीनन पर है जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधरे लोयन लोचन पाया। जो भूखे को भोजन भाख है अक्षोदा मिटे कल्प तरासे जैसे जल पीवत प्यास जाई प्राण सुखी हो तृप्ति पाई जैसे निर्धन को धन पावे ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे कैसे पिंड प्राण निस्तर ही ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही तुम जो कहो हम पद परवानी हम कैसे जाने हे सैनानी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा महात्मा आपने तो ऐसी बात बता दी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे और प्रत्यक्ष भी कर दिया क्योंकि आप जी को फिर एक बार उदाहरण देते हैं प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत इसमें दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान है जन्म मृत्यु होती है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता है। 123 पृष्ठ पर तीसरा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं अपनी माता की तुम शुद्ध स्वरूपा हो यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मीन जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अब भगवान विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से हम यहाँ उपस्थित विद्यमान हैं हमारा हम सामने खड़े हैं तो हमारा आविर्भाव यानी जन्म तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता हम तो नाशवान है हमारा जन्म मृत्यु होता केवल तुम ही नित्य हो जगत जननी हो प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुण्यात्मा इस पवित्र पुराण ने चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है दूसरा दुर्गा इनकी माता है और तीसरा रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और चौथा ये कर दिया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं ना किसी के सुख दुख को ये बढ़ा घटा नहीं सकते जिसका जैसा भाग्य है जैसा जिसका कर्म है उतना ही एक फल दे सकते हैं। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं पुण्यात्माओं ये आप जी के लिए है सारा कुछ खेल वो जो भी ज्ञान वहां मालिक ने प्रचार किया आज आपने भी उसी तरह समझना है जैसा कि उस प्यारी आत्मा ने जो कितना आरूढ़ था धर्मदास के मैं ना मानू किससे कि मेरा मार्ग फाइनल है हैं इससे अलग कोई भक्ति मार्ग है नहीं फिर बाद में वो कितना पश्चाताप करता है। अब क्या बताया कि धर्मदास जी को परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मृत्यु को प्राप्त होंगे इनकी जन्म मृत्यु होती है यह विनाशी नहीं है तो धर्मदास जी कहते हैं कि आपने ऐसी बात बता दी अब मुझे तड़फ लग गई इस यथार्थ ज्ञान से मुझे परिचित कराओ ताकि मेरी बेचैनी मिटे। कैसे क्या बताते हैं धर्मदास जी कह रहे हैं तुम जो बटक बीज कह दीना तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीना हमको चीनन पर है जिंदा कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। अब कैसे इस जीव का दुख मिटे जन्म और मरण का हमने तो आज तक किसी से ये ज्ञान सुना नहीं। ऐसी कल्प करो गुरु राया जैसे अंधे को लोचन पाया कहते हैं गुरुदेव ऐसी दया करो कि जैसे अंधे को आंखें मिल जाएं, जो आप बता रहे हो इस ज्ञान को विस्तार से बताओ ताकि मुझे आज इतनी तड़प है जैसे अंधे को आंखों की आवश्यकता है। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधे लोचन पाया, जो भूखे को भोजन भाखे, अक्षुद्धा मिटे कल्प तेरा से। जैसे भूखे को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन मिले तो उसकी अक्षुद्धा समाप्त हो। जैसे जल पीवत तिस जाई, प्राण सुखी हो तृप्ति पाई। जैसे प्यासे को जल मिले तभी उसकी संतुष्टि हो, आज मेरी ये हालत होगी। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे। जैसे निर्धन को धन मिल जा मिले तो उसको सुख हो, ऐसे उसकी चाह हो। ऐसे आज मुझे आपके द्वारा दिए गए इस अनमोल ज्ञान की चाह होगी। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। अब कैसे मेरे जीव का उद्धार हो, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही। तुम जो कहो हम पद परवानी, हम कैसे जाने सैनानी। हे जिंदा, आप कह रहे हो कि मैं ही वो पद परवानी हूं, मैं ही वो मार्ग बता सकता हूं और मुझे वो पद प्राप्त है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में बताया है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो पूरे ब्रह्मांडों की व्यवस्था बताए, सृष्टि रचना को सुनावे, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक अंग के बारे में विस्तार से बतावे। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। फिर तत्वदर्शी संत मिल जाने के उपरांत फिर उस उड़जी हुई गुत्थी को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, यानी अच्छी तरह समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है और उसी की साधना करनी चाहिए, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। तो यहां क्या बता रहे हैं कि कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पड़ी। तुम जो कहो हम पद परवानी, हम कैसे जाने हे सैदानी। आप कह रहे हो कि मुझे वो पद प्राप्त है, अब मेरे क्यूकर विश्वास हो, हम कैसे समझे। धर्म कहे सुन जिंद तुम, हम पाए दीदार। गरीब दास नहीं कर सर कुछ, उघरे मोक्ष द्वार। अब ये पुराना रंग है ना, ये फिर आड़े अड़ जाता है। एक बार तो ऐसी तड़प हुई कि भगवान मुझे इतनी लगन लगी जैसे भूखे ने रोटी की आवश्यकता होती है भोजन की, निर्धन को धन की तड़प, अंधे को आंखों की तड़प, प्यासे को जल की तड़प। कुछ देर के बाद फिर काल उसके अंदर फिर प्रवेश कर गया तो क्या कहने लग गया। त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। धर्मदास फिर लग गया वाय बोली बोलने। त्रिदेवन ब्रह्मा विष्णु महेश की कहते इनकी तो महिमा अपार है बाबा, जिंदा तू के जाने। त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। ओ तेरा गजब भैया, एकदम सर्प की तरह पलट गया। जो कहे तू क्यों बात बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि के रचनार हैं। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूं विष्णु नाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। तावालीन वहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। परमात्मा ने सोचा भी ढीठ कति नहीं मानना, इतना सारा ज्ञान बता दिया है परमात्मा ने, बहुत गहराई से बताया, प्रमाण बताए, देवी भागवत का रेफरेंस दिया, आंखों देख लिया। एक ब्राह्मण ने भी पूछा जो वही मथुरा में गड्ढे था, और उसने भी कह दिया भाई इस लिखत ऐसा ही रखा पर यो हम नहीं मानते, ऐसे हमने कदे सुने कोई ना। वह बोली धर्मदास बोले, अपने आत्मा आपके सामने कोई बातें कर रहा हो, ज्ञान चर्चा हो रही हो और आप जी को एक अनमोल ज्ञान वो बता रहा हो, आप उसको सिंपल मैन मान रहे हो। ऐसे ही धर्मदास जी की सती थी, वो परमात्मा को सिंपल मैन मान रहा था, सामान्य मनुष्य। जब उसने ये कहा कि मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं तू सेवत हूं कृष्ण विष्णु मुरारी, उसी समय परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, यानी अदृश्य हो गए, एकदम आगे से दिखाई नहीं दिए। अब ऐसी घटना वैसे भी घट जाए तो भी आदमी चिंतित हो जा। फिर उसने सोचा भाई तो कोई भगवान था, देवता था, पर तने बहुत गलती कर दी। ओए होए, कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे। परमात्मा ने सारा निर्णय उनको दिया कि गीता ज्ञान दाता परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास आप क्या मानते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बताया, किसने बोला। धर्मदास जी ने तपाक से उत्तर दे दिया कि ये तो सर्वविदित है, श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण जी कौन है? विष्णु जी। धर्मदास जी कहते विष्णु जी। और विष्णु जी को आप क्या बताते हो? अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। हाँ बिल्कुल सही। परमात्मा ने कहा यदि गीता जी में आपको ये पता लग जाए कि ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु जी भी नाशवान है, मान लीजिए आपकी बात को बड़ी कर दें, आप कहते हो विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु ने गीता बोली। वैसे तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस ब्रह्म काल ने दिया है, लेकिन वह बात तो तेरी बुद्धि में अभी आवेगी नहीं। पर आप यही मानकर चलो कि श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया और श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, और श्री कृष्ण जी मान लीजिए आप ही कह रहे हो, हम तो कह रहे काल ने बोला था ज्ञान और काल ही बोल रहा है, तो गीता ज्ञान दाता आप उसको कोई भी मानो। चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में और नौवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में स्वयं कह रहा है कि मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, मैं अविनाशी नहीं हूं। देखिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा चौथे अध्याय का पांचवा श्लोक, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। हे पंतम अर्जुन, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसे सद है कि जन्मता और मरता है गीता ज्ञान दाता, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर ये चौथे अध्याय का ही नौवां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्यम अलौकिक है, दिव्य है अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, न तो ऐसा ही है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी समय में नहीं था, यानी मेरा पहले जन्म ना होया हो, अथवा तो नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मांगे, जन्म मृत्यु होगी। और ये देख दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, अब गीता ज्ञान दाता कहता नाश रहित तो उसको जान, यानी कोई और है अविनाशी, जिससे ये सारा संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग सर्व दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा उस प्यारी आत्मा को गीता जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि निकाल तू कल पढ़ रहे था, आप पढ़ रहे थे अभी, तो 7वें अध्याय के श्लोक पढ़ रहा था, 8वें के पढ़ रहा था, 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया है गीता ज्ञान दाता से कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके बारे में आप बता रहे हो कि जिसको जानने के बाद, जिसे परिचित होने के उपरांत ये प्राणी केवल जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करता है, फिर इस झूठे संसार की वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, किसी वस्तु की चाह नहीं करता। अब देखिएगा सातवें अध्याय का 29वां और 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र। पुण्यात्माओं, ये एक शिक्षा सथल है, आध्यात्मिक शिक्षा सथल, आध्यात्मिक स्कूल। इसमें ये दास चाहता है कि आपका पूरा कोर्स करा दूं और फिर आपका मन लग जाएगा भक्ति में, विश्वास हो जाएगा। सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितय यतंती ये। अब गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैंने जो तुझे बताया है कि तत्वदर्शी संत की तलाश कर, खोज कर, वो यथार्थ ज्ञान बताएगा, परमेश्वर के परम तत्व के बारे में जानकारी देगा। कहते जो उस बात पर मेरे ज्ञान पर आश्रित हो जाता है, फिर वो संत से, उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाता है, सारे अध्यात्म कर्म से परिचित हो जाता है, ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हो जाता है, वो फिर केवल जरा मरण मोक्षाए यतंती। कहते हैं जो श्रद्धालु मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाते हैं, वे तत्वभ्रम विदु, उस तत्वभ्रम से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, फिर वे केवल जरा मरण मोक्षाय तंती। वो केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से ही छुटकारे का प्रयत्न करते हैं, नथिंग एल्स। जो मेरे शरण होकर, अनुवाद इन्हीं का अनुवाद, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब 30 में ये बताया है कि जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित पुरुष मुझे ही जानते हैं। कहते हैं जो मुझे भगवान समझ रहे हैं वो तो मेरे तक सीमित रह जाते हैं, बस यहां समाप्त हो जाता है। 7वां अध्याय 30 मंत्र है। अब 8वें में फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, 8वां अध्याय अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने कहा वो तत्ब्रह्म क्या है, वह पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने तीसरे मंत्र में दिया है, 8वें अध्याय के, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, ये परम अक्षर ब्रह्म क्या स्थिति है, गीता जी अध्याय नंबर 15 का प्रथम श्लोक ये देख, अध्याय नंबर 15 का आपको प्रथम श्लोक सुनाते हैं। ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अध्य शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये मजबूत एक अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा गया, एक वृक्ष कहा गया, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, छंद यानी विभाग जिसके हैं वो पत्ते आदि उसके विभाग हैं, ऊपर ने मूल है, नीचे ने शाखा है और पत्ते उसके आदि बहुत से उसके आगे विभाग हैं, और ये तम वेद, इसको जो जानता है, वेद माने जानता है, इसका ज्ञान रखता है, सही ज्ञान बता देगा भिन्न भिन्न, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसमें अनुवाद किया है ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जिसकी जड़ संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ तो समझो मूल आदि पुरुष परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। अध्य शाखम, यहां अनुवाद गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया, अध्य माने नीचे को। देखो इन्होंने ही ये श्लोक नंबर 2 में, ये श्लोक नंबर 2 है 15वें अध्याय का, इसमें अध्य दो बार लिखा है, अध्य च ऊर्ध्वम, अध्य च मूलानी, ये अध्य, इसका अध्ययन सुनो स्वयं ही अनुवाद किया है नीचे, यहां देखना अध्याय माने नीचे, तो यहां यही करना था। ये बिचल गए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, अध्याय माने नीचे लिखना था, ऊर्ध्व माने ऊपर को, जो मूल है वो आदि पुरुष परमेश्वर है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। अध्याय शाखम और नीचे को उसकी शाखाएं हैं, ये संसार रूपी पीपल को जो शाखाएं, उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, छंदासी वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ये छंद माने अलग अलग टुकड़े विभाग उसके पत्ते आदि कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष जड़ सहित, जड़ से लेकर पत्तों सहित जानता है, तत्व से जानता है, सवेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और फिर ये बताया है कि उसके पश्चात दूसरा श्लोक, उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप रतगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी ये शाखाएं हैं, रूपी ये शाखाएं हैं, ये समझ लो विषय पर वाला, ये शाखाएं हैं, विषय कोपलों वाली शाखाएं हैं, शाखा नीचे और सर्वत्र ने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर, अध्य माने नीचे फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मुख्य कारण है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोकों में नहीं, ऊपर नीचे स्वर्गलोक पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर बस। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये गीता जी संसार रूपी वृक्ष की पूरी जानकारी यानी सृष्टि रचना तेरे और मेरे इस डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं इसके विषय में नहीं जानता, परमात्मा ने कैसे सृष्टि रची, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में यानी तेरे मेरे गीता जी के ज्ञान के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति मुझे पता है, इसलिए इस सोविरुद्ध मूलम, सोविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो तो अति दृढ़ है, वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होता, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख शस्त्रेण, दृढ़ माने अचल, जिस ज्ञान में कोई मीन मेख ना हो, उस वैराग रूप शस्त्र नहीं तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान रूपी उस शस्त्र द्वारा काटने का अर्थ है उस तत्व ज्ञान के द्वारा समझ कर, अब चौथे में कहा है उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक पुरुष भक्त फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की परिवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता बता रहा है, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए।

0: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए हैं, तीन भगवान बताए हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरय च अक्षर है, क्षरय च अक्षर है एव च क्षरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ बताया है? इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, दो प्रकार के भगवान हैं, एक सर्पुरुष और ये अक्षर पुरुष। सर्पुरुष ये ब्रह्म है और ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। इन दोनों भगवानों के इस लोकों में जितने भी शरीरधारी प्राणी है वो सब नाशवान है और ये खुद भी नाशवान है, केवल जीवात्मा ही अविनाशी है। आगे फिर क्या कहा है? अब 17 में मैं कमाल कर दिया। उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ प्रभु वास्तविक भगवान तो इन दोनों से 16 में श्लोक में वर्णित सर्पुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इनसे भी कोई न्यारा है। परमात्मा इति उदारत है जिसको भगवान कहा जाता है। यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा है। इनके द्वारा अनुवाद। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्मा, आत्मा और परमात्मा का संवाद हुआ, आज वो हमारे लिए एक प्रमाण हो गया। परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास आप श्री विष्णु जी के द्वारा मान लो, आपकी बात बड़ी करते हैं कि विष्णु जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोला और आज वो गीता ज्ञान दाता कह रहे वो परमात्मा तो कोई और है। फिर धर्मदास ने अड़ंगा अड़ा दिया कि प्रभु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता यानी विष्णु कह रहा है, धर्मदास के शब्द

अब ये लोक वेद है और ब्रह्म कह रहा, गीता जी का ज्ञान देते हुए ब्रह्म कह रहा है, को परमात्मा तो कोई और है, उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये लोक वेद के आधार से जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर मान रहे थे, महेश्वर मान रहे थे, मृत्युंजय कालजय जिनके कोई माता पिता नहीं है ऐसा मानते थे, ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी मेरे अधीन प्राणी हैं, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। पर पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे। अब आपने कल वेद में देखा था कि वो परमात्मा यहां आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो आप ही उसका ज्ञान अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब देखना, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनके विषय में आपको दिखाते हैं। ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता ज्ञान दाता ने कितना बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है और बीच में वो कुछ नहीं बता पाया। कहता उसको तत्वदर्शी संत बतावेगा उसके बारे में और वो इसके सारे विभाग बता देगा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन है। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने यह ज्ञान बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पेड़ कहलाता है और जड़ हिडन होती है, वो गुप्त होती है, पृथ्वी में प्रोक्ष होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष, ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का निर्णायक ज्ञान, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16 17 का आशय, इसके अंदर आपको अक्षर पुरुष ये तो एक पेड़ समझो, इस संसार रूपी वृक्ष का तना परब्रह्म को, और सर्वब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, इसको सर्वब्रह्म कहो अर्थात सर्वपुरुष कहो, काल ब्रह्म कहो, ये एक मोटी डार निकली तने में थे, यो तो है ज्योति निरंजन काल सर्वपुरुष, सर्वपुरुष ये अक्षर पुरुष और रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। अब जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल जो है ये है परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये है वो पूर्ण परमात्मा। और अब हम आपको उस परमात्मा के विषय में जानकारी ऐसे देंगे, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म, ये कबीर देव है, कबीर जुलाहा जो काशी में धानक बन का आए थे, परमात्मा धान की भूमिका की थी, ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, ये मूल है पूरे संसार की, जहां से वो वही यही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी जड़ से सब तने को आहार चलता है, तने में आता है, तने से डार में जाता है, डार से शाखाओं में जाता है, फिर हमें प्राप्त होता है। कई पुण्यात्माएं कहते हैं जो हमारे ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते, वो कहते हैं कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में अनाप शनाप बकते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं। पुण्यात्माओं, जो हमारे सत्संग को ध्यान से नहीं सुनता और ये सत्संग कहीं चल रहा हो, उस समय दुर्भाग्य से उस व्यक्ति जो नया श्रोता होता है उसको यही सुनने को मिल जावे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, इनके माता पिता हैं, वो बिदक जाता है, वो फड़क जाता है,
एकदम

कुपित हो जाता है। उस प्राणी को चाहिए कि धैर्य रखे और न्यू तो सुने युग नाशवान क्यों कह रहे हैं, कुछ प्रमाण तो देंगे तो वो पूरे सुनने चाहिए। तो कई ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं, विष्णु जी की पूजा छुड़वाते हैं, देवी देवताओं पूजनों से मना करते हैं। दास केवल वही आज्ञा देता है पूजा करने की जो हमारे सदग्रंथों ने बता रखी है, जो हमारे सदग्रंथों में हमारे सिलेबस में विद्यमान है, वही ज्ञान दास कहेगा आपको तैयारी करने के लिए, नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना व्यर्थ है। तो जैसे एक आप जी आम का पेड़ लाए, आम का छोटा सा पौधा, उसको प्रॉपर बीजने का कौन सा तरीका है, जड़ को नीचे गड्ढा खोदे और जड़ को नीचे मिट्टी में दबाएं और जड़ की सिंचाई करें, पूजा करें, फिर वो धीरे धीरे खुराक, जड़ से खुराक, तने में, तने से डार में, डार से पत्तों में, धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो जाएगा और फिर टहनियों के फल लगेंगे, आम लगेंगे, फल आम का फल लगेगा। तो टहनियों को कोई ये कहे कि टहनियों को काट दो, जड़ की सिंचाई करते रहो, ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना ये कभी दास ने नहीं कहा, ना परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर की वाणी में है, तीनों देवा दल में बसे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सबसे पहले हम इन्हीं की मजदूरी देते हैं, इन्हीं का जाप देते हैं, उसके बाद फिर आप जी को सतनाम दिया जाता है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का जाप, ओम तत् सत में से दो मंत्र, ओम तो सीधा ही है और तत् ये सांकेतिक, ये दोनों अक्षर मिलके सतनाम बन जाता है। फिर सतनाम का जाप आपको दिया जाता है, जो अक्षर ब्रह्म की कमाई होती है और अक्षर ब्रह्म के लोक से पार होने के लिए उसकी भक्ति की कमाई होती है। और तीसरा सत जो होता है वो सारनाम है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों को दे करके आपको सतलोक भेजा जाएगा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना नहीं, छोड़ने को नहीं कहा गया। जिस प्रकार देखिएगा, हम कोई पौधा लाए आम का और उसको हमने ऐसे बीजा गमले में, समझ ले इसको गड्ढा समझ लो, गड्ढा हमने बीज दिया, तो गड्ढे में जड़ की तरफ से बीजा और जड़ की सिंचाई शुरू की, पूजा की, तो ये बड़ा पेड़ बन गया। ये फिर पेड़ बन जाएगा, ये फिर ऐसे पेड़ बनेगा। अब ये पौधा ऐसा है और कोई ऐसे कर रहा हो, टहनियों को तो गमले में यानी मिट्टी में डाल रखा हो और टहनियों की पूजा कर रहा हो, सिंचाई कर रहा हो, उसको इतना कहना आवश्यक बनता है समझदार व्यक्ति का कि ये आपने पौधा ठीक नहीं बीज रखा, ये प्रॉपर वे नहीं है प्लांटेशन का, पौधे के बीजने का ये सुचारू रास्ता नहीं है, ये शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, पूर्ण परमात्मा की साधना को त्याग देना, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो दास ये कहता है कि इस साधना, किस बीज, इस पौधे को ऐसे बीज लो, भक्ति रूपी पौधे को, मूल मालिक की पूजा करो, सिंचाई करो, फिर यहां से आपके शुभ संस्कार बन के तने में जाएंगे, तने से डार में जाएंगे, डार से फिर इन टहनियों में, तीनों शाखाएं में जाएंगे, इन शाखाओं का फल लगेंगे और फिर ये देवता आपको फल देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारे को यहाँ हमारे वर्क डन दे सक देते हैं और कोई नहीं देता, लेकिन हमारे शुभ संस्कार शास्त्र अनुकूल भक्ति से बनेंगे, ये है वो शास्त्र अनुकूल साधना। हम मूल मालिक को इष्ट मानकर उसकी पूजा करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारे शुभ संस्कार यहाँ हमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही दिए जाएंगे। गीताजी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक यही कहा है कि तुम यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे और बिना मांगे फिर फल दिया करेंगे, अपने आप फल लगेंगे इनके। तो परमात्मा ये कहा करते, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जा।
आवे। माली सीते है भूल कूहू फिर फले फुले ए गाय। परमात्मा कहते हैं कि एक कैसा दे सब सदै, इस एक की पूजा से सब अपने आप हरा भरा हो जाएंगे, और जो सब साथ रहे हैं और मूल को छोड़ दिया, सब साथ दे सब जावे। समझदार व्यक्ति जो सही परिचित है माली कैसे पौधा बीजा जाता है, यानी तत्वदर्शी संत, माली सींचे मूल कूहू फिर फले फुले गाय। अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यह ज्ञान दिया था, बाद में धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था, जो आज हम दासों के पास सुरक्षित उपलब्ध है, जिससे आज हम सभी पुण्यात्मा अपने भगवान को पहचान रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा, धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं परमेश्वर, कि वो अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो सबका मालिक है, वो सबका पिता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, यानी सदा रहने वाले उस सतलोक को जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता, उसको प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहना है तो ओम नाम का जाप कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सहयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम श्वास तक जो जाप करता है, शरीर छोड़ते समय तक छोड़ते हुए इसका नाम जाप करता हुआ जाता है, तो ओम नाम से जो उपलब्धि होगी उसको प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि अर्जुन 16-17-18 में कहा कि चार प्रकार के मेरी ब्रह्म साधना करते हैं, अर्थार्थी आरत और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से ही जंतर मंत्र करते हैं वो अर्थार्थी कहलाते हैं। आरत जो संकट निवारण के लिए को जंतर मंत्र अनुष्ठान करते हैं वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी और कविता या किसी स्तुति का सहारा नहीं लेते, ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, इनको नहीं बोलते वो। और तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकले थे परमात्मा पाने के लिए, जैसा उनको ज्ञान मिला उसको आगे बकने लग गए, स्वयं साधना की नहीं, ऋषि महर्षि पाक गए, वक्ता बन गए। और चौथे ज्ञानी, ज्ञानी वो आत्मा होती है जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और वेदों को पढ़ने से भी ये ज्ञान हो जाता है, जैसे गीता जी में लिखा कि उस एक ही परमात्मा की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, अन्य से नहीं। तो उन ज्ञानियों को ये पता लगा कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और अन्य देवताओं की पूजा से लाभ कुछ नहीं, मोक्ष नहीं। तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने आपे निष्कर्ष निकाल लिया, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है, ओम करतु समर किलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप जपना चाहिए काम करते करते, विशेष कसक के साथ अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करना चाहिए। तो उन्होंने यही सोच लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है, इसका ओम मंत्र है। तो उन ज्ञानी आत्माओं के बारे में 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, नेक आत्माएं हैं, पर ये मेरे आली अनुतम साधना में आश्रित है क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तो ओम नाम से उपलब्धि भी व्यर्थ बताई, इसलिए कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तीन मंत्र का जाप बतावेगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कि ओम तत्सतीति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है, ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, ओम तत्सत ये तीन अक्षर का मंत्र, ये तीन अक्षर का मंत्र है, नथिंग एल्स इसी का निर्देश है, तीन विधि से इसके स्मरण किया जाता है।
जिनको सारनाम प्राप्त है उनको पता है कि तीन मंत्र का जाप और तीन ही विधि है इसके सिमरण करने की। ओम तस प्रगट है, तत् और सत ये सांकेतिक हैं। ये दास बताओगा उन मंत्रों को और कोई नहीं बता सकता, ना कोई अधिकारी है ना किसी को आज तक पता था, केवल उन संतों को छोड़कर जिनको भगवान ने दर्शन दिए और उनको बताया, लेकिन उनको कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको बताओगे नहीं। धर्मदास जी को जो पूरा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरही। इसी प्रकार फिर इस ज्ञान को भी गुप्त रखने के लिए कहा था कि अभी इसको खोलना नहीं, जो मैं तुझे बता रहा हूं लिख जरूर दे इसको। अब इस बात को सुन भी रहा है धर्मदास जी और फिर भी वो अज्ञान आगे अड़ गया, ओडंगा पूरे जन्म 40 साल 50-60 साल से ठोक रखा था वो अज्ञान, वो फिर आगे अड़ गया और के बोले परमात्मा से, तिर देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। अपना ज्ञान फिर अड़ा दिया गए, सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। आंखें दिखा रहा है, बोल बोल के सुना रहे है और फिर भी अहंकार अभिमान बस वो नालायक नहीं मान रहा। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी, शंकर गौरी गणेश मनाऊ, इनकी सेवा सदा चितलाऊ, तावालीन वहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। उसी समय परमात्मा अंतर जानोगे, अगदे किसा बुद्धू है। अब परमात्मा कहते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको जोगल जोटे। इतना कुछ प्रमाण देख के जो नहीं मानते कहते हो तो मूड हैं, और वो हमारे काम के कौन है, वो हमारे इस विद्यालय में प्रवेश योग्य कौनी, वो चल नहीं सकेंगे इस मार्ग पे। और इतना प्रमाण देख कर ऐसे भटक जाना चाहिए प्राणी को। परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि डूबे थे पर उबरे, हम डूबे थे पर उबरे, गुरु की लहर परखे और भेरा देखा जरा, हम तो उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़े हुआ करते, नौका भी नहीं थी, सूखे लकड़ों के ऐसा बना लेते थे बेड़ा सा और उसके ऊपर फूस फास रख लेते थे हल्का फुल्का सा और लकड़ों का, और उसके ऊपर बैठकर दरिया पार करा करते। परमात्मा कहते हैं जब हमने साथ में एक अच्छा बेड़ा देखा जो डूबने योग्य नहीं था और जिस पर हम थे वो डूबने वाला था, और जब हमने देखा कि हम जिस पर खड़े हैं किसी ने बताया कि तुम डूबोगे इस पर आ जाओ, ये देखो सब टूटा पड़ा है तो अभी दरिया की धार में बह जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि आप जी जो बुद्धिमान है, जो साधनाएं तुम कर रहे हो, कबीर इस संसार को समझाऊ के बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पार। तुम जो साधना कर रहे हो ये डूबण की थी, अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा। कहते हम डूबे थे पर उभर गए, गुरु की लहर परख, गुरु जी की ने जो हमें संकेत दिया उसको हम परख गए एकदम, और बेड़ा देखा जर जरा उतर चले फड़के। फड़के माने नो देखते एक सेकंड भी ना लावर, एकदम जंप करके और दूसरे पर चढ़ जा जो सुरक्षित ले जा सकता है। तो जो साधनाएं आप जी किया करते थे, कर रहे हो, जब तक इसका ये दास के पास नहीं आ रहे हो, चाहे किसी संत मंत से आप जुड़े हो, आप उस डूबने वाले बेड़े पर बैठे हो, और जिनको ये पता लग गया, ज्ञान हो गया कि सचमुच ये तो डूबने वाला हर, ये सही आ गया साथ में, तो एकदम फड़क के कूद जा, एकदम जंप लगा जा, एक मिनट की देर लगावा नहीं। तो धर्मदास जी ने ये फिर एट बैठ शुरू कर दी, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब सामने से जब एकदम परमेश्वर हट गए तो उन्होंने सोचा भाई ये तो कोई परमात्मा थे, परमात्मा नहीं थे तो ये तत्वदर्शी संत जरूर थे। और फिर एकदम रोने लग गया बैठ के,
हे परमात्मा या के बनी मेरे साथ, मैं तो इनको एक मानुष मानू था, ये तो कोई फरिश्ता थे, कोई देव थे, और कितना निर्मल ज्ञान दिया, और मेरे इस अज्ञान ने मेरे साथ कितना जुल्म कर दिया। अब यो संत मिले नहीं और मुझे चैन पड़े नहीं, या साधना जो कर रहा हूं कर रहा था, या तो एक अन्य की भी कोनी, अब सारा दिन तो चिंता में गया हे भगवान। और मन मन में तड़फ रहा है कि वो संत एक बार फिर मिल जा, मैं कभी वाद विवाद नहीं करूं, दोनों कान पकड़ के जो कहे भगवान एक बार फिर मिला दे उस संत ने, सारी काटे की बात कहा था और मुझ नीच ने के जुल्म कर दिया, कितना वाद विवाद कर दिया उस महापुरुष ने, कौन सा मेरे से पैसा लेना था, वो तो मेरे परमार्थ के लिए जिक्र कर रहा था और सारी सच्ची बतावा था। हो

आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-777-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near Stanford.

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी ले कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.

नाम रहा लेवला नानक की बेनंती प्रभु जी नाम रहा लेवला एक ओंकार प्रसाद असा महला चौथा शन घर चौथा।

0: सब जग चलनहार। कून मिठा कून माखे कून डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुदबार।
1: सच ता परजाणी जो दा सच्चा होए, कूड़ की बल तेरे तन करे सत होए। सच ता परजाणी जो सत रे प्यार, नाम सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सच ता परजाणी जो जुक जाने जियो, तरत काया साध कै विच दे करता बियो। सच ता परजाणी जो सिख सच्ची लै दा, जाने जी की किस पुन दान करे। सच ता पर जाने जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ के बैरे करे निवास। सत सबन होए दारू पाप कटे तोए, नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले होए। पौड़ी दान मिन्नत लिखा जे मिले ता, मस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़ी है। होए एक मन अलख ते आई।

मन धरो ध्यान ऐनिस करो बचन गुर हृदय धारे हुन गुरु जल बिमल अथाह मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो।

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखत पारे कर आज। सुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत

0: ज्ञान का पर्त हो रहे तह काज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज सोदामा अपदा ते रखिया ज्ञान का पर्त हो रहे तह काज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज
1: चोलना गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपे नाम नव नित अपे रसन अनस रसे सत कर जानियो हुन प्रेम रंग पाइए गुरमुख त्याइए अन्न मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम बंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु।

गुरु जप मन रे, जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे। हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर, तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे। तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख है,

0: करम पै फूले सुत दारा सेउ प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना।
1: सो कहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जनम जनम दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहद साह। जिस पास बैठे आसो ही है सब नादा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु। जिस पास बैठे आसो ही है सब नादा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। राग सूही महला चौथा। शांत कार पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाई। अवगण विकड़ा गुण रवा बाल राम जीओ। हर हर नाम त्याई गुरबाणी नित नित चवा बाल राम जीओ। सतगुर पुरख मिलाई अवगण विकणा गुण रवा बाल राम जीओ। हर हर नाम त्याई गुरबाणी नित नित चवा बाल राम जीओ। गुरबाणी सद मीठी लागी पाप विकार गवाया। हौ मैं रोग गया पौ भागा सहजे सहजे मिलाया। काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो।

संत जना कर मेल गुरबाणी गावाइया बाल राम जीओ। बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड परम गवाया।

एक मन एक चित पार, ए मन हर जीत्याए तू, एक मन एक चित पाए, एक मन एक चित पाए, एक मन एक चित पाए। गुरु राम कली महला तीजा, आनंद कोंकर सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया, सहज सिद्धि मनोजिया वधाई, राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दों ता गाऊ हरि के रामा।

दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंड बुंग जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहेगुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा

हाजर है दार परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाह।

नारे क्या कीजे, हर करता सब किछ जानदा, सिर रोगत दीजे। जिन नानक गुरमुख।

पिता आप माया, आप पिता आप माया, रब आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया, आप पिता।

संत जना कर मेल, गुरबाणी गावाइया बलराम जीओ। बाणी गुर गाई परम गत पाई, पंच मिले सोहाया गया करोद ममता तन नाठी, पाखंड परम गवाया।

गौर परसादि ब्रह्म पशाता नानक गुणी गहीरा मन मोख विछुड़ी दूर महल न पाए बाल गई बाल राम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बाल राम जियो कूड़ कपट कमावे महादुख पावे विण सत गुरु

आपे दया करे प्रभ दाता, सतगुर पुरख मिलाए, जन्म जन्म के बिछुड़े जान मिले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गड़ाए, हृदय तन ओ माहिया बाल राम जियो, पंडित पादे आने पत्ती बह वाचाइया बाल राम जियो, पत्ती वाचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने घर आए,

नदेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठिया ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने, की गल? गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिंदे हां, तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रहीआं ने? ना महाराज, असी ये विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच खलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां परिक्रमा कीतियां, पंज पैसे ते नारियल लै के गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंगो, अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया। अज तो बाद देह धारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु गुरु है बाणी। आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच, जिन्हें मेरे शरीर करके दर्शन करने होण, मेरे खालसे का दर्शन करे, जिन्हें मेरे नाल वचन करने होण, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी प्यार नाल पढ़े, मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा। ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया का धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सर्वत का भला करेगा। अज ये वचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आग्या पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान पे हमला किया, हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकण वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सर्वत का भला करना है, दूजियां का धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है, आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दी, मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए। किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा है, होर भी घोर पाप करदा है, घरां विचों कीमती समान भी लुट लिया, ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सतसंगियो,
बीबियां ने हाल दुआई मचाई है, किसे ने परा नू आखिया वीरा मैं तेनू लकड़ी वधे सी, किसे ने बाप नू आखिया बावला मैनू रख लै, पर अबदाली दियां फौजां अगे किसे दा जोर नहीं चलता। कीमती समान ते बीबियां नू बच्चियां नू गड्डियां ते लद्दिया तुर पिया है। जदों पुजा मारकंडा दरिया दे कोल शाहबाद दे नेड़े, इत्थे जंगल दे विच बाबा दीप सिंह दी अगुवाई हेठ कुछ सिंह जंगल विच बैठे ने, प्रशादा छकन लगे ने। दो सिंह पानी लैण वास्ते गए ने, सिंघां ने की तकिया भई ओ गड्ढे ते की जा रहा है, इन्ने बड़े गड्ढे तोड़ उड़ती जा रही है, ये की जा रहा है। इन्हें नू एक बीबी ने सिर तां चुकिया ते सिंघां वल देख के हाल दुआई मचाई, ओए गुरु दे सिंघो तुहानू गुरु दा वास्ता, सानू इन्हां लटेरियां कोलों बचा लो, बचा लो सानू इन्हां लटेरियां कोलों। सिंघां ने इस बीबी दी आवाज सुनी, समझ गए ने जाके सारी गल बाबा दीप सिंह जी नूं दसी। बाबा जी ने आखिया खालसा जी प्रशादा नहीं छकना, साडे लई प्रशादा छकना हराम है, हिंदुस्तान दी लाज गड्डियां ते लदी जा रही है, तां प्रशादा छकांगे जे असी इज्जत बचा लवांगे। अज सूरमिया ने हथां विच कृपाना पकड़ियां, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दा ध्यान तरिया ते जयकारियां दी बुलंद आवाज दे विच अबदाली दी फौज ते हमला कर दिता है।

ये मुगली फौजा नस गई ने, सिंघा ने इज्जत बचा लिया ने, गुरु दया शेरा ने बीबिया नू बच्चिया नू घरों करी पहुंचा दिता है। ताइयों ते कदी अवदाली ना जकरिया खान दे कोल गया। जकरिया खान तेरा राज होवे, तू मैनू हरजाने भरदा होवे, ते तेरे राज विच मैनू लोक लुट लैण। मैं पंजाब दे विच ही लंघिया ते तेरे कुछ लोकां ने मैनू बेचैन कर दिता। ना बई वो मेरे लोग नहीं होने, वो सिंह होने ने। सिंह होने ने वो कौन होंदे ने, दिखा ते सही बई दिखा नहीं सकता। सरकारी रिपोर्ट अनुसार सारे सिंह खत्म कर देते ने, पर फिर भी कदी कोई एक आ जावे ते साडे लई मुसीबत खड़ी कर देता है। जंगलां विच रहिंदे ने, घोड़ियां दियां काठियां ते सौ जांदे ने, कल्ला ही होवे ना ते सवा लख कहांदे ने। एक भी अपने आप नूं सवा लख कहांदे ने, छोले खांदे होण ते बादाम कह के खांदे ने। अबदाले जे किते तू उन्हां नूं जंग विच जूझदा देख ल

जकरिया खान तू किथे खो गया, किना ख्यालां विच चला गया। बई कोई बहादुरां दी कौम लगदी है जिन्हां कोलों तू भी डरदा है। तू मैनू जरूर एहो जे लोग मला, ना बई मैं तेनू असली सिंह ते मला नहीं सकदा। उन्हां दी नकल जरूर दिखा देना। अज जकरिया खान ने अपनी दरबार विच मरासियां नू बुलाया। क्यों बई सिंघां दी नकल करके दिखाओगे? क्यों नहीं, नकल करना ते साडा काम है। लोड़ींदा समान ले लिया, आखण लगे साडे उपर हमला करवा देना, असी सिंघां दी लड़ाई जुद भी करके दिखावांगे। नकलीए जा के जंगल विच बैठ गए, दरियां बछा लईयां, कोई विचारां कर रहे ने, लगदा है किसे सोच विच बैठे ने। कोई चौंकड़े मार के पाठ कर रहा है, कोई घोड़िया नू खरखरा कर रहा है, पर मुख दे विच कुछ बोली जांदे ने। अबदाली जकरिया खान फौजां तक रही ने। अबदाली ने पूछया भी ये की करदे ने? ये बेले टाइम अपना कार विहार करदे ने ते नाले सिमरन भी करदे रहिंदे। भई ओ दरख्त ते कौन बैठा है? ये टांगू है। जदों कोई हमला करदा है ते ये दस देंदा है। इन्ने नू जकरिया खान दी फौज ने हमला कर दिता है। टांगू ने आखिया, सिंगो सावधान हो जाओ, टिड्डी दल आ रहा है। अवदाली आसे पासे तकदा है, भई किहड़ा टिड्डी दल? भई अपनियां ही फौजां नू आखदे ने। हैरान होया, एक बुढ़े नकलीए ने अरदास करनी शुरू कीती। सुनी सुनाई अरदास सारी कर दिती। आखर विच आखिया, हे गरीब नवाज गुरु गोविंद सिंह महाराज, हमला हो गया है, सानू मैदाने जंग विच जूझण दा वल बख्शो। चक के नकलिया ने कृपाना ते बुलाया गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जकारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कह के जकरिया खान की फौज उत्ते हमला कर दिता। एहो जिहा युद्ध कीता, कहर मचा दिता। जकरिया खान की फौज मार दिती है, कुछ नस गए ने। अबदाली ते जकरिया खान भी नस के जान बचाई। भई की हो गया नकलिया ने? नकल करन वास्ते आखिया सी, ये सची मारी जांदे ने। अबदाली ने अपनी फौज भेजी बहुत सारी, इन्हां नकलियां नू काबू विच कीता। बुढ़ा नकलिया जो इन्हां दा मुखी सी ना, उन्हूं कई शिपाइयां ने पकड़ के लिया के जकरिया खान दे मूहरे खड़ा कीता। जदों जकरिया खान ने इहदियां अखां वल तकिया ते देखिया नहीं जांदा, पै आंदा है, बई ये उमरासी ते नहीं लगदा, लगदा है सिंघी आ गए इन्हां विच। किवें घूर घूर के तकदा है। शिपाही ने लिया के पानी दा कटोरा मुख दे उत्ते पाया ते इहनूं सुरत आई। आसे पासे देखदा, ऐ की हो गया? फौजां मरियां पईयां ने, साडे भाई भरा वी विच्चे मरे पए ने, बई ये की हो गया? जकरिया खान आखिया, तैनू नहीं पता किन्नी साडी फौज मार दिती है ते हुण आखी जांदा की हो गया? सतसंगियो, इस तकलीए ने आखिया, तुसी सानू नकल करन वास्ते कहा ते असी नकल करी गए, पर जदों असी अरदास करन लगे अरदास असली हो गई, जकारा असली वज गया। जदों असी जकारा बुला के कुरपाना चुकिया ते सानू नहीं पता लगा साडे विच कौन आ गया, सानू फिर कुछ नहीं पता। सतसंगियो, देखो जकारे विच किडियां बख्शां ने। एक नकलिया जकारा बुलावे
ਉਹਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਿਤਨੇਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: जाग सलोने।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इक्को इक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। मादो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा, दंडौत बंदन अनिक बार। सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो हो प्रभु। नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो हो प्रभु। नानक दे कर हथ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो

भक्ति गज के अपनी भगती आए नानक ओदे चरणा विच अरदास बेनती करो किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मिलो राम। हे वाहिगुरु किरपा करके मिलो साडा मन जपन लग जाए सतनाम श्री वाहिगुरु ओदी नजर हो जाए ता फिर सात संगत शब्द विचों रस आउंदा है नहीं तो माफ करो भावे गुरुद्वारे दे नाल रहैशी कंध सांझी होवे उठ के तुसी मत्था नहीं टेक सकते। कईयां दा घर गुरुद्वारे दे नाल ही है उन्हां नूं पुछ के वेखो कई कई दिन लंघ जांदे ने अंदर मत्था टेकण दा हुक्म नहीं है। कईयां दे भाग इत्थों तक भाग लड़ी कमजोर हो जांदी वो गुरुद्वारे वालियां नूं कहिंदे जी स्पीकर पर इहनूं कर लो सानूं आवाज़ आउंदी। सवेरे भाई साहब लग जांदे ने बहाना बच्चियां दा बणाउणगे वी साडे बच्चे पढ़दे आ जी माफ करियो जिन्हों बाणी सुन दे नाल पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुंदी है वो होर किसे तरीके नाल किवें पढ़ सकदा है। असीं बाणी दा महाना बनाउने जी स्पीकर सवेरे इधर नूं लग्गिया होया है व्याह शादी होवे डीजे 12 बजे तक बजदा है वो कह के बंद कराउणा पैंदा है जां फिर किसे दी लड़ाई होवे तां बंद हुंदा है। जिन्हों गुरु दी बाणी दे नाल साध संगत मुश्किल आउंदी है वह बंदा किवें सुखी हो सकता है। जिस बाणी नूं कहिंदे विआह कन्नां विच पैंदी जी सानूं औखियाई हुंदी है पातशाह ने तां कहा भाई बाणी सुनण नाल दुख रोग संताप उतरदे ने फिर तां तेरे भाग माड़े जे बाणी सुनण नाल मुश्किल आउंदी है। इस गुरु तों तां आवाज़ तुहानूं रोज़ सुणा

0: कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast Calgary।

वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पावन पवित्र शब्द चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान पिता श्री गुरु रामदास साहेब महाराज जी का उच्चारण किया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नवीन स्वरूपां दे उपर 773 अंग ते सवाईमान है। नाल सतगुरु जी ने हैडिंग लिखिया शांत। शांत का अर्थ हुंदा जिस विच परमात्मा वाहगुरु का जस किया होवे। शांत रूप जिहड़ी इस प्रकार ये बाणी श्री गुरु रामदास साहेब महाराज उच्चारण करदे ने, नाल ही सतगुरां दर्ज कर दिता घर पहला। जिस वेले गुरु के प्यारे सिख गुरु के प्यारे सिंह रागी इस नूं गायन करनगे

0: महाराज जी ये परम पवित्र उपदेश सानू बख्शिश करदे ने। इस शब्द के अंदर सतगुरु जी ने एक ब्याह का अलंकार बनिया है, जिस प्रकार के नाल पुरातन समय के अंदर जिस वेले बच्चे ते बच्ची दे रिश्ते की खोज करते सन, अज भी खोज करते। पुराने समय बच्ची का जिहड़ा बाप हुंदा आप वो खोज करन जांदा, जां किसी कोई सियाने पतवंतियां नूं भेज दिंदा भी तुसीं बच्ची वास्ते योग वर दी जिहड़ी ढूंढ करो। जदों वो रिश्ते लभ जांदे सन, सब तों पहला कुड़म ते कुड़माई का रिश्ता बनता है। बच्चे ते बच्ची का तो रिश्ता उस वेले बनना जदों गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख उन्हां दीआं लावां हो जांदीआं, पल्ला पकड़ाया जांदा, फिर वो पति सती के रूप में बनते ने। जदों ये रिश्ते जुड़ जाते ने उस वेले दोनों परिवारों का कुड़माचारी का रिश्ता बन जाता है। तो जिहड़ा ऐसा विआह का सारा अलंकार गुरु रामदास महाराज साहब जी इस पावन पवित्र शब्द के द्वारा सानू बख्शिश करते हैं। सतगुर पुरख मनाए, हे अकाल पुरख परमात्मा वाहगुरु जी साढ़े ते कृपा करो, सानू सत नास तो रहत गुर चेतन पुरख व्यापक स्वरूप जेड़े सतगुरु ने, गुरुआ के गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, ऐसे सतगुरां दे नाल परमात्मा जी सानू मिला देना करो, मेल देना करो।
1: गुण विकना गुण रवा,
0: जेड़े साडे अंदर अवगुण औगुण हैं ये बिक जाण। जदों वस्तु कोई बिक जाती फिर उहदे ते अपनात नहीं रह जाती, बंदा छड्ड दिंदा उहनूं। साडे जिहड़े ऐसे अंदर औगण पए ने अनेक प्रकार के, ये बेक जान साडे अंदरों औगणा का त्याग हो जाए, छड्ड दईए औगणां नूं। ते गुण रवा जिहड़े दैवी गुण हन उहनां नूं रवा असी उचारन वाली हो जाइए।

0: सहज निर्जतन ही सहज ज्ञान स्वरूप दे विच गुरु साहब उन्होंने मिला देंदे ने नेव देंदे हन
1: सेज गुर शब्द सुखाली
0: जिस वेले गुरु दे शब्द का कोई अभ्यास करता गुरु तो उपदेश लोके उदी कमाई करता है ता उदी काया सेज जिहड़ी काया बुद्धि रूपी सेजा है यह सुखाली कई सुखां का घर बन जाती है उस दे सेजा पिया करके बुद्धि दे अंदर तमाम जिहड़े सुखों नू प्राप्त हो जाते हैं
1: तत्कार भोगो
0: जिस वेले गुरु साहब जी ज्ञान बख्शिश कर देंदे ने जीवन शब्द का अभ्यास करदे होए ने तां तत्कार भोगो

पांच तत्तां दा शरीर से परमात्मा ने दिता वह भी आरोगत कहिए रोगों तो रोग तंदुरुस्त हो गया। शरीरा इथे रारे नूं कन्ना लगिया बहुते शरीरां दा बाचक है। तीन शरीर परमात्मा ने दिते ने, एक कारण शरीर है, एक स्थूल शरीर है, इस प्रकार के इन्हां दे सूखम शरीर है। तिन्ने शरीरां दे जिहड़े रोग से लगे हुए

0: पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखों जी नो 403-829-5000 जा फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: विष्णु को तो दीनी बड़ाई हम पूर्ण करतार, गरीब दास जिंदा कह ये सकल सृष्टि हमार। वेद कते बिना जाको पावे, 18 प्राण कथा नित गावे, जिर सिरजे पुरसा और नारी, ही जाको खोज रहे त्रिपुरारी। जिसको ये त्रिपुरारी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोज रहे हैं। शब्द स्वरूपी सब गट बोले, पर गट देख नहीं वो ओले। सनक सनंदन ब्रह्मा था के, अंत कोट शंकर पद बाखे। निर्णय किने ना किन्या भाई, कोटि विष्णु गए दुनी रचाई। कित से बीज पान फल मोरा, अंत कोट जा बीज बिजोरा। नारद सारद महिमा गावे, अल्प रूप को सो नहीं पावे। अल्प रूप है हमरा अंगा, जा अंत कोट त्रिवेणी गंगा। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंधान। गरीब दास जिंदा कहे शब्द सत्य परमान। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनी सब सृष्टि सब पर लो जाई। अब सारी रात करवट बदल बदल के, कभी बैठ के कभी यूं देख के ऐसे काटी। अब जो साधना किया करता था वो शालिग्राम की सेवा और जल पूज, वो जल में नहाना उस तीर्थ में जिसमें गधे भी ना नहावे, इसे बूढ़े पानी में नहा के मोक्ष पावे। सुबह स्नान कर लिया अपने किसी कुएं का ये बाल्टी भर के, और ना वह शालिग्राम की पूजा करी, ना गीता जी का नित पाठ किया करता वो करया। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि जो तू मंत्र जाप करता वो गीता जी में एक भी को ना, हरे राम राधे श्याम, सीता राम राधे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ये कितना गीता जी में है मंत्र, धर्मदास जी से कहा था प्रभु ने। और तुम गीता जी को सिरोधार्य मानते और उसकी आज्ञा का पालन कर नहीं रहे, तुम तो आप ही नरक में जाओगे। तो हरे राम राधे कृष्ण विदा करा गया। सवेरे उठ के उसने सोची रोटी बना ले और दिन में खोज करूंगा उस महापुरुष की, क्योंकि वार्ता में काफी टाइम लग गया, दिन छिप गया, सूर्यास्त हो गया था, सारा दिन लगे रहे चर्चा करते रहे करते रहे। सुबह उठते ही धर्मदास जी ने क्या किया कि लकड़ी ला रखी थी तोड़ कर जंगल में, थे सुबह सुबह चूल्हा चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दी, फिर रोटी बनाई, एक लंबी लकड़ी लगा रखी थी चूल्हे में, और वो बीच तक थोथी थी, ओलो थी अंदर से, और सही होगी लकड़ी लगा के आग जला दी, सारी सब्जी बना ली, रोटी बना ली। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया, कुछ रोशनी में दिखन लग गया बहुत कुछ। पहले तो थोड़ा थोड़ा रोशनी में सराट गया था, फिर अच्छी रोशनी होगी तो क्या देखा उसने, वह लकड़ी जलती जलती सामने आ ली थी, वो ज्यादा से ज्यादा 1 फुट शेष थी। अब धर्मदास जी क्या देखते हैं कि उस लकड़ी, वो जो थोची लकड़ी थी उसके अंदर से चींटियां मुख में अंडे लेकर और बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, आगे से अग्नि में चटक मटक हो रही हैं, पीछे भागने की चेष्टा कर रही हैं, कुछ तो लकड़ी के अंदर से धुआं आ रहा उससे मर रही हैं। बाहर जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि उसके पिछले एंड पे, लकड़ी के पिछले तिरछे कटे हुए एंड पे, अंत पे, सिरे पर एक तरल पदार्थ उबल रहा होता है, जो लकड़ी थोड़ी सी गिल्ली होती है, अब उधर से उसके ऊपर गिरती है, चटक मटक होकर जल रही है। अब धर्मदास जी ने सोचा ये तो भाई इतनी लंबी लकड़ी थी, यानी कम से कम 2.5-3 फुट की, और इसमें ना जाने कितनी चींटियां थी होंगी, है भगवान, सारी ये जल गई इसमें, तो इनके अंडे बच्चे भी जल गए, पूरा नाश हो गया, एकदम काप गया भक्त और बहुत पछताया, एकदम लकड़ी पर पानी डाला, बुझा दिया अग्नि, जितनी रोटी बनी थी उतनी ही रख ली। अब सोचा कि ये तो सब पाप का आहार हो गया, मैं नहीं खाऊंगा इसको, आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी संत को खिला दूंगा, मुझे पाप नहीं लगेगा, इस उद्देश्य से उस सारी भात को उठाकर, उस सारे भोजन को लेकर थाली में रखकर चल पड़ा किसी संत की तलाश में। परमेश्वर कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब परमात्मा ने, परमेश्वर ने एक संत रूप धारण कर लिया, जैसे हिंदू धर्म के प्राणी श्रद्धालु जिसको संत मानते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे बड़ी बड़ी जटा हो, एक लाल सा कपड़ा लपेट रखा हो शरीर पे, हैं, पर इस प्रकार की वेशभूषा वाले को हम साधु मानते हैं। यही रूप बनाकर परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब धर्मदास जी ने देखा कि एक संत बैठा है, उसको प्रणाम किया, सामने वो थाल रख दिया भोजन का और कहा, महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। आप परमेश्वर ने रूप बदल रखा था, धर्मदास जी पहचान नहीं सके। परमेश्वर ने कहा कि हाँ धर्मदास, मुझे भूख लगी है भाई, रख दे भोजन खाऊंगा। अब धर्मदास जी एक बार सतर्क हुए, कहने लगे इन मेरे नाम से कैसे परिचित हैं। फिर सोचा, मैं बड़ा सेठ हूं, भंडारे करता रहता हूं, ये कहीं आया होगा मेरे वहां, मुझे जानता होगा। अब परमात्मा ने क्या किया, अपने पास एक करमंडल रखा हुआ था, एक करमंडल लोटा जल का, और उस लोटे में तो जल लेकर के एक मंत्र बोला, मन मन में बुदबुदाया और छिट्टे मार दिए सारी उस पर, रोटियां पर और दाल पे, सब्जी पे। वो सारी की सारी रोटियों की और उस भात की, सब्जी की चीटी बन गई और सारी थाली काली होगी, नो गुच्छे के गुच्छे पड़े उसमें, और अंडे लेकर थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जो जिंदा के रूप में बात करी थी पहले दिन, और कहा, रे धर्मदास, के कह रहा था तू हम जीव इंसानी करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, ऐसे पाप के भोजन को तू मुझे खिलाने आया था। जब उसने देखा तो वो महाराज जी है, शरण पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया, हे भगवान मुझे माफ कर दो, हे परमात्मा आपकी एक एक बात सच्ची है, मुझ अपराधी का कोई पाप आगे अड़ गया जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया, मेरे उस अज्ञान ने परमात्मा, मेरे अभिमान ने आपसे मुझे दूर कर दिया, अब जो तुम बताओगे मैं सारी सुनूंगा, मुझे एक बार फिर ज्ञान सुना दो। फिर परमात्मा ने उसको सृष्टि रचना सुनाई, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए इस राम नियारा। परमात्मा ने धर्मदास जी को वो सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि धर्मदास, अब मैं तुझको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने के पश्चात तेरी आत्मा अप गदगद हो जाएगी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने कहा कि जिस तुम भगवानों को तुम परमात्मा मान बैठे हो, इनसे अलग है वो पूर्ण परमात्मा, और उसी का संदेशा लेकर मैं आया हूं, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का वर्म नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। परमात्मा कहते, अब मैं तुझे तेरे तीनों देवताओं की जन्म पत्री बताता हूं, इनका कैसे जन्म हुआ। परमात्मा ने सबसे पहले धर्मदास जी से एक प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब धर्मदास जी कहने लगे, भगवान हमने नहीं पता, ना आज तक किसी ने हमें बताया, आप ही दया करो, आप बताओ। तो परमात्मा कहते हैं, ले सुन ले, या राम कहानी बताता हूं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, धर्मदास ये सारा संसार विचलित है, कोई भी इस निर्वाण पद से परिचित नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे कथा सुना रहा हूं और यही कथा तू सबको सुनाना जो तेरे निकट आवे, लेकिन मानेंगे नहीं जल्दी सी, फिर भी ये कथा सुनाना। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई, कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना, आदि राम का उस सनातन परम ब्रह्म का किसी ने भेद नहीं जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, आदि राम सनातन परमात्मा सबसे पहले वाला अमर भगवान, उसको बहुत कोई बिरला ही जानता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति तो सुन के तुरंत मान जाएगा प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख सुने तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक श्रद्धालु के लिए होता है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, ये साहिब मेरा करो उबारा, टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बन छुड़वाए, सतलोक में कीना दुराचारी, ही काल निरंजन दी ननकारी, माया समेत दिया भगाई, सोलह संख कोस दूरी पर आई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब परमात्मा बता रहे हैं कि वहां सतलोक के अंदर सबसे पहले तो सोलह पुत्रों की सृष्टि की, फिर वहां द्वीप बनाए एक एक को रहने के लिए दिया, उसके बाद इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, उसके बाद दुर्गा की माया की उत्पत्ति की, फिर हमारी सब की उत्पत्ति उस मुनि में से एक माया की उत्पत्ति की। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लेना। धर्मराय भी कहते हैं इस काल को, सर्वब्रह्म को, सर्वब्रह्म को सर पुरुष को धर्म राय कहते हैं। ये कहता है कि मैं सत का राज करूंगा, धर्म का राज करूंगा, न्याय करूंगा, और इस लोक में न्याय नाम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्यायाधीश कहलाता है, और इसने अपना एक न्यायाधीश भी अलग से डिपोर्ट कर रखा है धर्मराज, और ये स्वयं भी धर्म राय की सुप्रीम जज की पावर इसके अपने पास भी रखता है। धर्म राय ही किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए, इस ज्योति निरंजन सर पुरुष इस काल के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, ये तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग सब धोखा खावे। इस काल के तीनों पुत्र इस काल के इस एक ब्रह्मांड के ढमढमे ने चला रहे हैं। इस काल को तीन लोकों की विशेष आवश्यकता है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, क्योंकि इन तीनों लोकों में इसके आहार है। 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करता है, और 125,000 यानी 25,000% एक्स्ट्रा डेली उत्पन्न करता है, ऐसा इसको श्राप लगा हुआ है। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे, पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। कहते हैं उस परमात्मा के बारे में कौन जान सकता है, तो सबको भ्रमित किए हुए है, सब उल्टे ज्ञान से रंगवा रखे हैं झूठे संत गुरु भेज भेज के। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या, ये अपने तीन लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन अपने तीनों पुत्रों को इनका इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर दिया, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तम गुण युक्त शंकर जी को, और स्वयं ये जा बैठा एक अपने अलग ब्रह्मांड के लास्ट में। वहां कोई नहीं जा सकता, ना ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु जा सकता, ना दुर्गा जा सकती, वो अपनी ही रजा से किसी को वहां ले जा सकता है। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना, अलक निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु से भेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान लगाते हैं, आखिर में इनको भी ये काल नहीं मिला, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए किसी साधक को तो विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव रूप में देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में देता है। तो भोली आत्माएं इन ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्रों को ही ये सुप्रीम पावर मान बैठे हैं। ऐसे साधक साधना करते हैं वेदानुसार, और उनको विष्णु रूप या ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, अपना ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दिए, जिस कारण से सभी भ्रमित हो रहे हैं। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोग जीवकीन आहारा। बटपार माने ठग, ये काल जो है बड़ा ठग है, और तीन लोग के जीवों को ये आहार कर रहा है, खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूड़ उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना छोड़ता, इनको भी खाता है ये, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। आप श्रीमद देवी भागवत में तीसरे स्कंद 123 पृष्ठ पे, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के और दुर्गा के पुत्र हैं तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन अंधे प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। अब उस समय तो धर्मदास जी सारी मान्य था कि जो कह रहे सही सही कर, ना तो पहले दांडी पा गया था जब मुकर जा था, अब सारी सुन रहा है बैठ के चुपचाप, कत्ती नहीं चसकता, और सब बातें उसको सारी सच्ची लग रही है, क्योंकि प्रमाण देख लिए थे। अकाल पुरुष का हूं नहीं चिन्ह्या, काल पाए सभी गैलीन्य। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। आदि ब्रह्म इस काल ब्रह्म ने तो सब माने बैठे, भगवान है भगवान है, और आदि ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म को कोई नहीं पहचानता। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। ये तीनों देवता और इनने के अवतार राम और कृष्ण, इन सारे जो इनने का जाप करन लग रहे हैं। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भी कैसे उतरो पार। आगे गरीबदास साहिब जी ने भी परमेश्वर की कृपा से उन्हीं के ज्ञान से प्रीतित होकर के यही ज्ञान बताया। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अपे खाई। ये ज्योत निरंजन और ये माया दोनों मिलकर इन प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, और ये काल खा रहा है। अपने जाए अपे खाई, अपने पुत्रों को उत्पन्न किए हुए को स्वयं ही खा रहे हैं, ऐसा ये काल अन्यायी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। सुन तो ये इस एक ब्रह्मांड के लास्ट में रहता है, और दुर्गा को यहाँ इंचार्ज बनाकर छोड़ दिया। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आदि तकत की कुती। इस निरंजन को परमात्मा यहाँ लताड़ रहा है। माया का धोखा देना भी होता है, जाल होता है, माया माने जाल। इस काल के द्वारा फैलाया गया जाल ये 100,000 जीवों को डेली खाता है। दुर्गा इसका सहयोग दे रही है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गिरा सैनित उठ दूती, ही माया आज तकत की कुती। 100,000 जीवों को यू काल डेली खा रहा है, दुर्गा इसका सहयोग दे रही है। 125,000 घड़िये नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 125,000 की कहते रोज ये भांडे ये शरीर, रोज 125,000 उत्पन्न होते हैं, 100,000 को खा रहे। आप देखते हो कहीं पूरे विश्व में देख लो, कहीं पर दो आदमी इकट्ठे मर गए कि तो 10 मर गए, कि नहर में बस गिर गई, कि तो 50 मर गए, कि तो विमान गिर गया, कि तो भूकंप आ गया कहीं सर्दी से, कि तो वैसे नेचुरल डेथ कोई हार्ट अटैक हो गया। अब बड़ा बुरा हाल कर रखा है और बाकी मूर्ख बने लगे रहते हैं कि यो मेरा एक मिनट में ना मेरा कहां होगा फिर डेरा। 1,25,000 गड़िये नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। इन पुण्यात्माओं को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित किया जा रहा है। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरसा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन बिस्त बैकुंठ बनाए। यो खोखापुर बताया है, कति खोखापुर में कति नकली इस लोक में ये जीव धोखे में रखे हुए, भरमा रखे हैं, भुला रखे हैं। ये अरहट का कुआ लोई, जागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, शेष महेश गणेश्वर ताही, हर डोर बंधे सब आही, सुकराजिक ब्रह्मा जिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देख्या, हर डोर कहूं सुन देखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहा मैं, हर हट डोर बंधे सब आवे। अपने आत्मा हर हट रहट, आपने हर हट कुआ नहीं देखा होगा। कहते हैं यहां जब तक तुम्हें पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति नहीं प्राप्त होती और अन्य साधनाएं करके तुम क्या करते हो, यहां साधना की धर्म किए पुण्य किया स्वर्ग में चले गए, वहां पुण्य अक्षीण हो गए, फिर वहां से नरक में गए, नरक से फिर पृथ्वी पर, कभी मनुष्य जीवन मिला फिर पुण्य किए थोड़े बहुत, पुण्य के आधार पर स्वर्ग में, नरक के आधार से नरक में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर 84,00,000 योनियों में। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, यागल बन जा है सब कोई, जिसमें ये ज्ञान दिया था उसमें तो ये आम होया करते हर जगह, और इसको चलाने के लिए एक अलग से बैल चलते थे, कोल्लो की तरह अलग से, और वो बैल चलते थे, ये ऐसे सॉफ्ट घुमाती थी इस चक्र को। तो नीचे से बाल्टियां पानी से भरती और ऊपर आती हैं, यहां खाली हो जाती हैं, और फिर ये खेतों में पानी चला जाता है। तो ये क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि जैसे ये रहट के कुएं की बाल्टी नीचे गई, यहां खाली होगी, फिर खाली नीचे न आई, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, ये रहट के कुएं का चक्कर। तो ये हमें बताते हैं, तुम्हारा जन्म हुआ, थोड़े बहुत पुण्य पाप लिए, बरके चले, ऊपर जाकर स्वर्ग नरक में खाली, और फिर आगे जन्म मृत्यु का ये अरहट का चक्कर आप जी का समाप्त नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का समाप्त नहीं। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बन जा है सब कोई, चिट्टी कीड़ी, ये चिट्टी कीड़ी कुंदर, कुंदर माने हाथी, और अवतारा, कीड़ी कुंदर और अवतारा, ये अवतार है, हरट डोर बंधे कई बारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते चतुर्भुजी भगवान कहां हुए, ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे, ये भी जन्म और मृत्यु के इस अरहट के कुएं में चक्कर में लगे हुए हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं है। ये कोटिक करता फिरता देख्या, हर डोर को हूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहां हुए हैं, ये भी हर डोर बंधे सब आवे, ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। अब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, कबीर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के पुत्र और दुर्गा और ये काल, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। परमात्मा कह रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है, उलझा रखा है, ये इन पांचों का परपंच है, हमारी जो हम कह रहे हैं इसको ले लेना, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, जैसे किसी आपत्ति काल में और कोई संकेत कर दे उसको भी समझ जाता है प्राणी जो उस दुख का निवारण चाहता है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया वाणी हमरी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है और युग युग में हमने ही आकर तुम्हारे को पुण्यात्माओं को सतलोक लेकर गए, तुम अभी रह रहे हो, तुम भी चलो। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ नाम है हमारा परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, और हमारा स्थान वो सनातन परम धाम है अजर अमर अस्थिर स्थानम। अजर जैसे जर जरा जरा माने बुढ़ापा, अजर जहां बुढ़ापा नहीं हो, अमर वो अविनाशी अस्थिर जो कभी भी डगमग ना होने वाला हमारा स्थान सतलोक है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया ये काल के बंदे प्राणी। अब परमात्मा ने कितनी गहरी बात कही है, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुर नर मुनि जन ज्ञानी। हम हिंदी भाषी तो उनको सुर नर मुनि जन ज्ञानी कहते हैं और मुसलमान भाई उनको पीर पैगंबर कुतुब ओलिया बोलते हैं। इन्हीं को एत्या को तोरा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। अपनात्माओं ये वाणी जो अभी आपको सुनाई है कि ये सुरनर मुनिजन ज्ञानी इनको भी रास्ता नहीं मिला, ये भी काल के बंध रहे हैं, इसका निर्णय यह देवी भागवत देगी, श्रीमद देवी भागवत। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे, 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। पुण्यात्माओं फिर यहां बताया है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो ब्राह्मण थे, जो राक्षस होते थे, वो कलियुग के ब्राह्मणा के सेवा करते। धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन इन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलियुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो ऊपर के तीनों युगों में जो राक्षस थे वो आजकल के ब्राह्मण ही से, क्योंकि अब के ब्राह्मण पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म क्रम से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
4: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਿਚਨ, ਬਾਰਸ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ, ਕਲੋਜ਼ਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨੂੰ 403-529-5000 ਜਾਂ ਫਿਰ 403-701-4947 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। HMP ਕਸਟਮ ਕੈਬਿਨੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 11 2316 27 ਐਵਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ 403-404-3500 ਯਾਨੀ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।
5: ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ? ਕਿਆ ਆਪ ਨਸ਼ਾ, ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲਹ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓਂ ਸੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ? ਤੋ ਅਵਸ਼ਯ ਪੜ੍ਹੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਅਨਮੋਲ ਪੁਸਤਕੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਵ ਗੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਯੇ ਸਭੀ ਪੁਸਤਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ ਵ ਅਨਯ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਭੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੇ ਪੁਸਤਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਂ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਲਾਖੋਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਨਾਡਾ ਮੇਂ ਯੇ ਪੁਸਤਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਃਸ਼ੁਲਕ ਮੰਗਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਜ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ jagatgururampalji.org ਪਰ ਜਾਏ ਯਾ 3065818061 ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।
4: ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰਾ 102.7 FM ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

0: प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: अपने आत्माओं, आप जी ने ये सुना के व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा ही पूजा करते थे, फूटे भागवत किसे विद्वान थे, गीता जी में कितना जिक्र भी नहीं है दुर्गा की पूजा का, गीता जी चारों वेदों का सारांश है, ना किसी चारों वेदों में दुर्गा की पूजा का विधान केवल एक ओम नाम के जाप का प्रमाण है। और दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा गीता में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। अब ये देखिएगा, ये है सातवां स्कंद, संक्षिप्त वही देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहां दुर्गा जी जो है हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है, देवी का के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब पर तो देवी ने अपने विषय बताया, मेरी पूजा ऐसे करो। श्री देवी जी कहने लगी पर्वत राज, ये पहले तो अपने बारे में बता, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित है, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। अब यहां क्या बताया है कि एकमात्र उस परमात्मा को जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी और कोई पूजा नहीं करे, ना दुर्गा की ना किसी और की, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो, यानी और कुछ पूजा नहीं करनी, केवल उस ओम नाम का जाप करो, और वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ये देखने की बात है कि ये तो कह रहे हैं कि कलयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण ज्ञाता थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और दुर्गा कह रही है कि मेरी पूजा भी छोड़, ब्रह्म की साधना करो, और ब्रह्म कह रहा है कि उस परम अक्षर की पूजा करने से तुम्हारी जन्म मृत्यु मटेगी, नहीं तो जन्म मृत्यु तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की एक वाणी, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी, ओए होए, ये धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले मालिक ने बोली थी, बताई थी कि ये सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी 88,000 ऋषि, 33 करोड़ ये देवता और ये ऋषि महर्षि, ये सारे काल का बंध रहे न ज्ञान को नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर के ब्राह्मणा का ये हाल था, और कलयुग के बारे में बताया दिया देवी भागवत ने, बार बार कहने की जरूरत भी कोई ना। उसके बाद फिर धर्मदास जी ने काफी देर चर्चा की, ध्यान से ज्ञान सुना। पुण्यात्मा, ये सत्यनारायण की कथा है, ये सत्यनारायण कथा है, उस अविनाशी भगवान की चर्चा है, ये आप जी का सौभाग्य है कि आपको ये सुनने को मिल रही है, और आप जी की आत्मा तर हो रही है, आपको नहीं मालूम आपको कितना लाभ हो रहा है, आप तो बालक हो, कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जो दान से कटते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो संत के दर्शन से अक्षीण होते हैं, कुछ आशीर्वाद से होते हैं, कुछ सेवा करने से होते हैं, कुछ मंत्र जाप करने से होते हैं, आप जी तो बच्चे हो अभी, आपको पता नहीं। जैसे माँ क्या करती है, छोटा सा बच्चा होता है 1 वर्ष का, वो दूध पी रहा होता है, या तो माँ के सतन से या फिर वैसे दूध उसको पिलाया जाता है, तो वो बच्चा खेल में इतना व्यस्त हो जाता है दूध पीना भी भूल जाता है। माँ उसको उठाकर लेती है, बेटा आजा दूध पी ले, बहुत देर होगी, तो वो दूध पीता है, अब दूध पीते पीते भी यूं सोचता है कभी छोड़कर माँ छोड़ डर में बाजू खेलू बाहर जाकर, तो वो ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है। वो कभी आप भी आ जाता है दूध पीने, माँ दूध पिला तो माता दूध पिला देती है, और दूध पीते ही वो फिर भागने की सोचता है कि वहां खेलूंगा, मेरा मित्र वहां बैठा है, ऐसे ऐसे वो बाहर भाग लेता है। लेकिन उस माँ को पता है, बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसको तो भूख सी लगती है इसलिए आ जाता है। माँ को पता है तेरा बच्चा दूध पी रहा स्वस्थ है और ये इससे इसके शरीर में वृद्धि हो रही है। तो इसी प्रकार आप जी को यहां हम बुलाते हैं और दूध पिलाते हैं आपको, ये यहां आकर दूध पान अवश्य करते रहो और फिर देखना आपकी आत्मा में कितनी शक्ति पैदा हो रही है। माँ जानती है, ये दास जानता है कि आपको कितनी ताकत मिल रही है, आपकी आत्मा को ये कितनी निर्बल हो चुकी है, काल की गलत साधना करके ये बहुत डर चुकी है, दब चुकी है। अब इसको बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए बहुत आहार डोज देनी पड़ रही है, तब यह उभरेगी। तो पुण्यात्माओं, आप जी का कितना सौभाग्य है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपने भी हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत नहीं आ रहा, सुने ज्ञान न जानते। जैसे आपको कई बार बताया, पहले हम तीन तीन पिक्चर लाया करते, VCR चला करते, 100 रुपये किराया दे के, और 9-9 घंटे सारी सारी रात आंख पाड़े बैठे रहते, चाह बनवाए जाते, पिए जाते, नो देखे जाते, भाई 100 रुपये पूरे करने हैं, 100 लाग रहे हैं या बीमारी लाग रही थी अपने। तो अब हम इस परमात्मा के लिए जागे, अमृतवाणी सुनने के लिए जागे, चाहे 2 घंटा आध घंटा ज्यादा भी हो जाए। पुण्यात्माओं, इसकी ताकत प्रवेश हो रही है इस ज्ञान से, ये सत्यनारायण कथा सुनकर। अब धर्मदास जी ने फिर बात याद आएगी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कचरा सारा ना निकलेगा, इतने गाड़ी चालक होनी। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, एक प्रश्न करना चाहता हूं। परमात्मा बोले, करवाई कर ले। के भगवान, आप कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई पावर को नहीं, शक्ति नहीं। देखो, मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ने आरे से चिरवा कह वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, भगवान जीवित कर दिया। परमात्मा ने कहा कि देख धर्मदास, वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो युद्ध के अंदर प्रथम दिन मारा गया था, जो सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुल नाश हुआ था, जब क्यों ना उसको जीवित कर दिया, क्या कारण था? धर्मदास जी बोले, जी मुझे नहीं मालूम। परमात्मा बोले, मैं बताता हूं। उस ताम्रध्वज लड़के की आयु शेष थी, उसको कटवा कर जीवित कर देना इन भगवानों के पास एक सिद्धि होती है। ये जादूगर दिखा दू आपने, अपने अंग के नरे नरे टुकड़े कर दे, फिर जोड़ देता है, लेकिन मरे हुए ने जीवित करके दिखा दे जादूगर। और परमात्मा मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी को भी जीवित कर सकता है, वो कबीर जी है। और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी धर्मदास, इसलिए श्री कृष्ण यूजलेस फेल हो गया था वहां पे। और पूर्ण परमात्मा आत्मा अपना डबल रोल कर रहे हैं, जिसका मैं संदेश लेकर आया हूं, वो अपने प्राणी की, अपने भगत की उम्र भी बढ़ा देता है, वो जीवित कर सकता है। फिर धर्मदास जी ने और भी कई ऊट पटांग प्रश्न कर दिए। कहने लगे, जी नरसिंह जी की उंडी ले ली थी, ऐसे ऐसे बात भरा श्री कृष्ण जी ने, क्यों कर मानू या बात आपकी, उनमें शक्ति को ना। परमात्मा बोले, तू बाढ़ में जा, जब तेरा समझ में आ जा जब आ जाइए। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया परमात्मा। अब वो मूर्ख फेर रो गुंडी त्रिया बालक की तरह, हे भगवान, हे परमात्मा, कहा गए आप, हे भगवान एक बार दर्शन दे दो, हे मालिक मैं फिर कदे नहीं वाद विवाद करूंगा, ऐसे रो रहा है। तहावा रोवत धर्म निनागर, कहां गए मेरे सुख के सागर, अधिक विवेक हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती, बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंध गर कूपा, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब रो रहा है वो बुद्धू बोंदू, भगवान था जब अटपट मारे बैठा बैठा। अब नो कहे, तावालीन बहे निर्वाणी मगन रूप साहेब सैलानी तावा रोवत धर्म निनागर कहां गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती जैसे निर्धन की लुट जा खेती। नो कहे भगवान मेरी गलती सी बन गई जैसे गरीब आदमी ने मुश्किल से खेती त्यार की और उसने कोई लूट ले जा लफंडर आज मेरा तन नाश हो गया सारा। ई बाप मिलो कोई ना क्योंकि दूसरी बार छेड़ दिए। कलप करे और मन में रोवे दसों दिशा को वो मगदोवे होए होए। नो कहे इस प्रकार कड़प रहा अंदर से तड़फ रहा है और कभी ऊपर को देख रहा है कभी इधर देख रहा है कभी मेरे पीछे तो नहीं छुप गए भगवान ऐसे देख रहा है चारों तरफ दसों दिशा को वो नू देख रहा है कहां गए भगवान इतने जल्दी कहां चले गए। अधिक वियोग हुआ हमसे ती जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कलप करे और मन में रोवे दसों दिशा को वो मगजोवे। हम जाने तुम देह स्वरूपा हमरी बुद्धि अंध गर कूपा। ए मालिक हमने तो आपको भी अपने जैसा ही देहधारी सुना था ऐसी ही काया से युक्त जाना था आप तो परमात्मा हो। हम तो मानुष रूप तुम जान्या सुन सतगुरु का किया पियाना। बेग मिलो कर हूं अपघाता मैं ना जी हूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया मैं जी हूं नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान आपने सुना दिया इतना तिया भक्ति कर सकता मैं जो पहले किया करता और आगे का रास्ता मुझे मिल नहीं पाया मेरे इस दुर्भाग्य ने मेरे इस अज्ञान ने उस अड़ंगे ने मेरे साथ ही आज भी धोखा कर दिया। जो अज्ञान मैंने ठोक रखा था भगवान से दूर कर दिया इसने मुझे। कहते हैं जल्दी मिलो भगवान ना मैं आत्मघात करूंगा मैं जी नहीं सकता। बेग मिलो कर हूं अपघाता मैं ना जी हूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया मैं जी हूं नहीं अवगत राया। अगम आगे का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान आपने मुझे सुनाया। तुम सतगुर अवगत अधिकारी मैं नहीं जानी लीला थारी। ओहो तुम तो सचमुच परमात्मा थे और मैंने आपकी लीला को समझा नहीं। तुम अवगत अविनाशी साई फिर बोको कब मिलो गोसाई। कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पयाने गरीब दास रोवत चले वो बांधोगढ़ अस्थाने। अब क्या होता है धर्मदास जी रोते हुए वहीं से रोन लगे थे और बांधोगढ़ में आगे मथुरा से 750 किलोमीटर दूर है मथुरा से बांधोगढ़ अपने मूल स्थान में घर पा गए और रोवे रोवे ना बोलने ना चलने किसी थे बोल भी नहीं रही थे। आके अपने महल में अपने घर में जाकर के और ऐसे मुंधा गिर के ऐसे बुरी तरह रो रहा है जैसे किसी का बालक मर जाए जवान या माँ बाप मर जाए दोनों बालक के। अब उसकी पत्नी देख रही है कि क्या हो गया भगत जी का आज ऐसा क्यों रो रहे हैं क्या बात है। उनकी पत्नी का नाम आमनी देवी था। अब आमनी देवी ने सोचा कि सेठ जी तो 5-6 महीने का टूर प्रोग्राम बना के गए थे 68 तीर्थ में धक्के खाना पैदल जाना को अपने 10 दिन में तो को नहीं और ये आगे तुरंत ही क्या बात होगी। तो उसने अपने आप को झंझोड़ा देखा टटोड़ा उसने अपना आप आइडिया लगाया कि ऐसा लगता है कि भगत जी का किसी ने पैसा चुरा लिया और ये अपना कार्य पूरा नहीं कर सके और रो इसलिए रहा है कि अब मैं पैसे मांगूंगा और या नाक चढ़ावेगी क्योंकि आमनी देवी बार बार मैं उनको टोक देती थी। धर्मदास जी खुले हाथ से दान किया करते थे भंडारे जब करते थे तो खुले हाथ से दान करते थे संतों को भक्तों को और वो टोक दिया करती कि दान भी हिसाब का होना चाहिए ऐसे पैसा ना बर्बाद करो बच्चे भी तो हैं अपने इस तरह वह कह दिया करती थी। तो आमनी देवी ने सोचा कि बहुत बुरी तरह रो रहा है इसकी तो पाप की बागन बनेगी। अब ये इसलिए रो रहा है कि मैं पैसे मांगूंगा और इसने नाक चढ़ाना इसे अब दोबारा मैं जा नहीं सकता या ऐसे जो खेचा ताणी से दान भी ले भी गया मैं तो लाभ नहीं तो आमनी देवी ने कहा कि सेठ जी, मुझे लगता है आपका पैसा चोरी हो गया, धन चोरी हो गया। आप चिंता ना करो, आपका तो भगवान ने बहुत धन दे रखा है, कोई पैसे की कमी नहीं। आप और ले जाओ धन, और मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। अब वह भी रोन लगी बैठ के, दो रही सा बुरी तरह तड़फता देखकर। तब धर्मदास जी काफी देर फिर भी रोते रहे कि यह गलत समझ गई मैंने। जब रो रहा का आत्मा कुछ ठीक हुई, जुबान निकलने लगी, तब रोते हुए कहता कि आमनी देवी, यदि मेरा ये भौतिक धन खो गया होता तो मैं और ले जाता तेरे से प्रार्थना करके, लेकिन आज मेरे से वो धन खो गया, वो धन लुट गया मेरा कि मुझे फिर मिले नहीं, और मैं जीऊं नहीं, उसके मिले बिना मैं जी नहीं सकता। आमनी देवी कहने लगी, ऐसा कौन सा धन था? फिर धर्मदास जी ने वो सारी सृष्टि रचना जो परमात्मा ने सुनाई थी और गीता और पुराणों के जो प्रमाण बताए थे वो सारे सुना दिए, उसका तो याद थे। अब आमनी देवी भी इतनी समझदार थी, वह कहने लगी, सेठ जी, आप तो लाला जी होकर सौदागर होकर सौदा चूक गए। ब्रह्मा विष्णु महेश से अपनी कौन सी रिश्तेदारी थी? हमने उनके बारे में किसी से ज्ञान सुना तो इन पर आश्रित हो गए, हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे, राज प्रत्यक्ष प्रमाण थे, और भगवान

देखता रहता। कोई भी दूर से संत भगत दिखाई देता, नंगे पैरों चल पड़ता और वहां जाकर देखता, अक नहीं वो तो नहीं है। कहीं भी कोई जंगल में आसपास आकर पता लगता कि वहां कोई संत आए हैं, वहां भी पहुंच जाता और वहां जाकर उस संत के हो सकता है भी रूप बदल रख्या हो तो उससे ज्ञान चर्चा करता, उनसे पूछता कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है, तो वो संत कहता नहीं, विष्णु जी और ही सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। सेठ जी उठ कर चल पड़ता करना, ये तो कच्चा बोल है, ये तो वो संत को नहीं। तो ऐसे ही वो परीक्षा करता रहा, कोई संत की पता चले वही पहुंच जाइए प्रश्न कर दे, वो तो फिर वही बोल रहे उठ कर चल पड़ना, कोनी बड़ी बात है। अब 6 महीने हो गए रोते रोते, सूख गया कति रोटी खाई जाना, मनुष्य जीवन का पता लग जाता पुण्यात्मा को कि भक्ति के बिना व्यर्थ है। और भक्ति जो शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, ना कोई कार्य सिद्धि होती है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई सुख होता, यूजलेस। फिर उसका करण का फायदा क्या? अब कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने आमनी देवी में प्रेरणा कर दी, उसकी धर्म पत्नी के अंदर एक विचार आया। उसने पूछा कि हे सेठ जी, जब वो संत महात्मा जी आपसे मिले थे तो उन्होंने कुछ बताया होगा कि मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ रहता हूँ? तो धर्मदास जी ने कहा, आमनी देवी, वो तो यूं कहे थे, भाई जहां धर्म भंडारे होते हैं ना, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहां मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में यह स्पष्ट प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा अपना रूप को हल्का करके, हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर भक्तों अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने निज स्थान से चल कर आते हैं और वो उन धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत शीघ्र पहुंच जाते हैं। और वही परमात्मा ने बताया कि ये मेरा विधान है। आमनी देवी ने कहा कि आप कोई भंडारा ही कर लो, मालिक आ जाते नहीं तो आपका ये जीवन मुझे देखा नहीं जाता। इस धन का मैं क्या करूंगी, जब आप मर गए तो मैं क्या आग लगाऊंगी इस धन के, आपकी मृत्यु होगी तो आप तो बहुत बुरा हाल कर रखे है, ना खाते हो ना पीते हो। फिर धर्मदास जी को होगी प्रेरणा और 3 दिन का भंडारा शुरू कर दिया, धर्म भंडारा। सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, दूर दूर से संत आए, भगत आए, भोजन शुरू हो गया, खाना खाने वाले खिला रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, नौकर वहां सेवा कर रहे हैं। और धर्मदास जी एक एक न देख रहे हैं, आए नहीं वो महाराज जी। अब 1 दिन गया, 2 दिन चले गए, परमात्मा नहीं आए। और सारी रात रोए, हे परमात्मा, कल मेरा अंतिम दिन होगा, यदि आप मन्ने दर्शन नहीं दिए आपका दास इस संसार में नहीं रहेगा, अब मेरे से जिया नहीं जावे, ये जीवन नहीं मेरा, भक्ति मुझे मिली नहीं, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो रहा है, पशु जैसा जीवन ये दास जी नहीं सकता। 3रे दिन भी दोपहर होगी, थोड़े से भक्त शेष थे जो निपटाने थे, भोजन कर रहे थे। अब धर्मदास जी ने हृदय में सोच ली, एक बार ये भगत चले जा सारे भोजन खाकर और मैं आत्महत्या करूंगा, अब मैं जीऊंगा नहीं, परमात्मा तो अंतर्यामी है, जानगे का आज भगत बात बिगाड़ेगा। उसी समय एक कदम वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, कदम के पेड़ के नीचे जो थोड़ी सी दूरी पर, 100 फुट की दूरी पर था, जहां भंडारा चल रहा था। अब धर्मदास जी अभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, एकदम अचानक नजर पड़ी कि वो बैठे एक महात्मा उसी जिंदे वाले वेशभूषा में। अब धर्मदास जी तो नंगे पैर भाग्या गया कति, और देखा नो एकदम नो कोड़ी बरनी के भगवान ही बना छोड़ू, ई बना जाइयो यहां से। परमात्मा बोले, भाई बैठ जा ढंग ते, महाराज जी फिर ई बना छोड़ियो मुझे।
फिर चरण पकड़।

0: दिए, मत्था टेक के पैर पकड़ दिए मजबूती तय। वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम। अब धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि कोई बात ना बेटा, अब नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि पहले तू ठीक नहीं हुआ था, तेरा लोहा गर्म नहीं हुआ था, अब मैं तेरे लिए आया हूं, फिर आराम से बात करांगे, इन सबको फारिग कर दे, इनको नहीं बताना मेरे विषय में। तो परमात्मा को पता था कि ये तो बहुत कुछ समझ चुका है, कोई नए सिरे तो पास बैठ गया, इसने और बिदका देगा, झूठ बोल रहा है, रोला मचा दे मरमाना और इकट्ठे कर ले, कोई नया भगत होता, इसलिए कहा कि इनको तो फारिग कर जल्दी ही। उन्होंने फारिग कर दिया, तुरंत आगे भीतर लेकर महाराज जी को घर लेकर आ गए परमात्मा को। आमनी देवी से कहा कि आमनी आजा, मेरा खोया हुआ धन मिल गया मुझे, आजा मेरा युद्ध धन आ गया। आमनी देवी ने भी पैर पकड़ दिया, एक पैर धर्मदास एक उसकी पति पकड़े बैठी है। आमनी देवी ने कहा महाराज जी आपका बच्चा बहुत नर्म आत्मा का है, अरे ये तो मैं इसको सहारा देती रही, ये तो मर जाता भगवान, इतनी कड़ी परीक्षा आपने नहीं लेनी चाहिए थी, आपने 6 महीने हो गया आपको याद करके रो रहा है ये। परमात्मा ने कहा बेटी ये इसको मैंने तंग नहीं कराया, इसका लोहा गर्म कराया है, पहले यो लोहा आकड़ था ठंडा था और चोट मारूं था यो टेढ़ा मेढ़ा हो था, अब इसका लोहा गर्म कराया, इसकी फड़क काटी है मैंने बेटी, यो पहले मेरी बात ने सुने था फिर काना पर घटाल जा था एक आधी बार, अरे यू अमृत ज्ञान बेटा सारी डोज अंदर जानी चाहिए जब समझ में आओगी, अब ये मैंने सेट कर दिया, अब जो मैं कहूंगा सारी सच्ची मानेगा और सच्ची सच्ची मैं बताने आया हूं, अब इसमें वो बकवाद ना रही, इसके अंदर से गंध निकाल दिया, 6 महीने की तड़फ देखे वैसा ही हुआ, दोनों ने नाम ले लिया। फिर परमात्मा को ने एक दिन फिर प्रसन्न कर दिया, प्रभु आप उचित समझे अपने दास को, क्यों मालिक ने करना था वो खेल, गवाह बनाने थे कि एक बार वो सतलोक आप जी का निज स्थान ये दास देख ले, आप मैं फिर ढोल के डंके पर सबको बता दूंगा। परमात्मा ने सोचा कोई बात ना, मैं भी यही चाहता हूं। तो परमात्मा उनकी आत्मा को निकालकर सतलोक ले गए और वो अचेत हो गए, परमेश्वर भी वहां से अंतर ध्यान हुए। अब आमनी देवी आई, कोई काम करके बाहर देखा, भगत जी अचेत पड़े हैं, महाराज जी चले गए हैं। आमनी देवी ने सोचा ये महात्मा जी के जाने के वियोग में बेहोश हो गया, रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, आसपास गांव के मौजूद व्यक्ति आ गए, 3 दिन हो गए ऐसे ही अचेत पड़ा है, वो तो वहां शरीर था, परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखाकर वापस छोड़ दिया, और वापस आते ही उसने देखा वो हो मैं कहां आ गया, सारा हाल बताया उसने कि परमात्मा है ये मुझे सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने बताया है कि मैं बनारस में काशी में धानक का काम करता हूं, अब मैं उस परमात्मा को खोजूंगा बनारस में जाके, पैदल चल दिया वहां से और पहुंच गया परमेश्वर के, वहां दर्शन किए, फिर बाकी जो वहां नाम प्राप्त किया जो सतनाम था, इस प्रकार पुण्य आत्मा का उद्धार हुआ। बोलो सतगुरुदेव।
1: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: गैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਨੂੰ 403-238-6667 ਯਾਨੀ 403-238-6667 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਕੈਲਗਰੀ। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
2: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: तन ओ मस्तक, तन ओ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: 44 44
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहजी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210 23 32 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede Ground।

0: परमजीत पलाहा डेजर्टिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North East कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातार। हर त्यावहु संत हो जी, सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाण। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाण। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाण। हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी, जो भावह मेरे हर भगवंत। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ भई ले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियाली। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्राणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाहीं विसरिया। आसा महला पंजवा।
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਾਪ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ द मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सबै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करियै, सब बैरन को आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। खोजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियह रक्षा। राख लेहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कांता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंग भयो राव कही भूप। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोष्ट जीते उठवाति उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो।
रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह स्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उवार। जिन

पाई, दोष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुमरे, तबते को आँख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जानेओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहेओ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै घर तां तेरै सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियां इह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर।

सतगुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म

चित आवण का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो।

तेरा किया सच सब होए, झूठा किस को आखिए साह, दूजा नाहीं कोए। सबना विच तू वरतदा साह, सब तुझ है त्यावह दिन रात, सब तुझ ही थावहु मांग दे मेरे साह, तू सब ना कर है एक दात।

सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साह सब तुझ ही माहे समाहे सब ना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझ है त्याव है मेरे साह ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह सब ना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझ है त्याव है मेरे साह ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210